आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

ना शिमांग में चिकरांग ये प्रोग्राम को बताने सो में यो देवी संग मजे ने कपा चासों को ताल लाच की चांग को कना सोना माना हा ताऊ जो जो ने शिमांग साल ने चिकनी बजे ओहन देली ने को तक्का कपा हिंदी को बुरांग को कना सोना मान गेन या ना कसवानी

0: उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है यादों की महफिल। आइए सुनते हैं गीत राजमहल फिल्म से, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में। वर्मा मलिक और तुलसी ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी ने संगीतबद्ध किया है।

0: हम सुन रहे थे ये गीत प्रियात्मा फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज में, योगेश के बोल राजेश रोशन के संगीत के साथ।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। आइए सुनते हैं गीत परवरिश फिल्म से आशा भोसले, आरती मुखर्जी, शैलेंद्र सिंह, अमित कुमार की आवाजों में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ यह गीत।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का अंतिम गीत जिंदा दिल फिल्म से. सुन रहे थे हम अभी ये गीत जिंदा दिल फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, वर्मा मलिक के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ. और आइए सुनते हैं आज के इस कार्यक्रम का अंतिम गीत जो कि द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से है. किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल और राहुल देवर्मन का है संगीत.

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर हाजिर होगा आपके बीच में बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सुरीला सफर एक कार्यक्रम जहां पर लेकर आते हैं हम कुछ बातें यानी इबारत के रूप में और ढूंढते हैं कुछ नगमों को। आज की इबारत है, जीवन में रोटी कपड़ा और मकान तो आवश्यक है, पर इनके साथ वे छोटे छोटे सपने और अपनापन भी जरूरी है जो चेहरे पर मुस्कान ले आए। फिल्मों में अभिनेता और अभिनेत्रियां इन्हीं जीवन रंगों को जीते हुए कभी डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, वकील, पुलिसकर्मी, गायक गायिका, बावर्ची, टूरिस्ट गाइड, तांगा चालक या अनेक अन्य किरदारों में नजर आते हैं। तो आपको बताना है आपका कौन सा अभिनेता या अभिनेत्री किस किरदार या गणवेश में आपको अधिक पसंद आया। हो सकता है आपकी और हमारी पसंद और उनसे जुड़े गीत भी एक जैसे हों, और यदि ना भी हों तो उन सुनहरे दिनों को याद करके अपनी यादों को ताजा करने का आनंद ही अलग होगा। चलिए चलते हैं, हम उन साथियों के संदेशों को पढ़ते हैं जिनमें हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज के गद्यांश में जीवन की बड़ी सच्चाई को उजागर किया गया है, इसे जीवंत बनाने वाली फिल्म किरदार की बात कही गई है। छोटे छोटे सपने होते हैं जो मन में उम्मीद की किरण जगाते हैं। जीवन में कोई बहुत बड़ी और जटिल पहेली नहीं है, बल्कि यह उन अनगिनत छोटे छोटे पलों और एहसासों का खूबसूरत गुलदस्ता है जिन्हें हम रोज जीते हैं। खुशियां हमारे भीतर ही मौजूद है, और इसी तरह से उन्होंने सारी बात कही है। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता ने बताया है कि कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर है या कोई व्यक्ति वो कोई रोल नहीं निभा रहा है, वह अपना काम कर रहा है अपनी आजीविका के लिए, पर अभिनेता और अभिनेत्री उस किरदार को किसी फिल्म की कहानी की जरूरत के हिसाब से निभाता है, अभिनय करता है और उसके हिसाब से उसका मेकअप किया जाता है। शायद वह स्वयं का मेकअप भी करता होगा। तो चलिए चलते हैं आज के पहले गीत की तरफ, जिसके लिए हमारे श्रोताओं ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इस गीत के बाद हम उसके बारे में बात करेंगे और पढ़ेंगे। लेकिन ये बताइए कि डाकिया से मिले कितने दिन हो गए हैं, या पिछली बार किसी को चिट्ठी या खत कब डाला था, बताइएगा। तब तक सुनिए ये गीत।

0: क्या किया बाबू?
1: क्या रे?
0: छह महीना हुई गवा, खतो नहीं लिखेंगे।
1: खतो नहीं लिखन? बोल क्या लिखूं?
0: बस जल्दी से अभी का लिख दो।

डाकिया डाक लाया, और ये डाकिया हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आता है। हमारे श्रोताओं से हमने पूछा कि आप पिछली बार डाकिया से कब मिले थे, तो हमारी एक श्रोता लिख रही हैं कि हम मिले तो कई दिनों से नहीं, लेकिन आज आपने मिलवा दिया। ये भी अच्छी बात है, पर एक बात देखिए ना कि ये जो डाकिया के रोल में हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि राजेश खन्ना ने बहुत अच्छी भूमिका अदा की है और ये गीत उनके ऊपर बहुत अच्छा फिट होता है। पत्र मिलने वाले के दिल की बात इस गीत में कही गई है, साजन के आने की खबर, शादी की बात, बहुत सारी बातें इसमें बताई गई हैं। जी बिल्कुल सही बात है, हमारे श्रोता बता रहे हैं कि आकाशवाणी और डाक से उनका गहरा संबंध था, परंतु अब कम हो गया है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम भी तो मनचाहे गीत लेकर आते हैं ना आपके बीच में, तो अपने पत्र हमारे पास भेजते रहिए। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मोबाइल ने हमसे चिट्ठी और खत लिखने का काम कम हो गया, खत्म ही हो गया है, और मोबाइल ने वो भी छीन लिया है। कई साल हो गए खत लिखे, डाकिया अब भी कम नजर आ रहे हैं। खत आप विविध भारती के लिए लिख सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। हमारी श्रोता बताती हैं कि कभी उन्होंने एक पोस्ट पार्सल किया था और किसी के शुभकामनाओं के साथ उसके उनके जन्मदिन के लिए ड्रेस भेजी थी, बहुत बढ़िया बात है। तो चलिए हम चल रहे हैं हमारे श्रोताओं की बातों की ओर, कि वो बड़े अच्छे से बता रहे हैं कि उन्हें कौन कौन से किरदार पसंद हैं, जिसमें राजेश खन्ना का ये डाकिया डाक लाया उसके साथ पलकों की छाँव में जो गीत है उन्हें पसंद है, बड़ा अच्छा किरदार था इस फिल्म का। इसके साथ उन्होंने कई सारी फिल्मों को पसंद किया है, और हम ये प्यारा सा गीत सुन रहे थे पलकों की छाँव में फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज़ में, गुलजार के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। अब हमारे श्रोताओं ने बताया है कि जैसे थ्री इडियट्स में करीना कपूर ने इस फिल्म में डॉक्टर पिया नाम की मेडिकल छात्रा और डॉक्टर का किरदार किया, आनंद में अभिनेता अमिताभ बच्चन ने डॉक्टर भास्कर बनर्जी का किरदार किया, जो एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। जी बिल्कुल, इसके साथ ही आयुष्मान खुराना ने भी एक मेल गायनेकोलॉजिस्ट यानी पुरुष महिला रोग जो पुरुष डॉक्टर हैं वह महिला रोग विशेषज्ञ का किरदार निभा रहे थे, वह काम किया। कबीर सिंह में अभिनेता शाहिद कपूर की एक बड़ी जुनूनी गुस्सेल अलग तरीके का किरदार निभाया, लेकिन ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में निभाया। इसके साथ ही कई सारी चीज़ें हैं जो कई सारे किरदार हैं, जैसे डॉक्टर बनते हैं, पुलिस बनते हैं, कभी एक गुंडे का किरदार भी करते हैं, और कभी कभी कई किरदार ऐसे कर जाते हैं जिन्हें देखकर हम खुद भी डर जाते हैं, और शायद यही अभिनय की पराकाष्ठा है और वो वहां से जीत जाते हैं। हमारे श्रोता बताते हैं फिल्म अवतार में राजेश खन्ना ने एक मेहनती पिता का किरदार निभाया जो किसी भी परिस्थिति में हारता नहीं है, आत्मसम्मान और परिश्रम के बल पर वह संदेश देता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका हौसला है। बिल्कुल सही बात है। अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ, तो बताइएगा कि ये जो गीत है इसमें हम किस किरदार की बात कर रहे हैं, किरदार कौन है और किरदार करने वाला कौन है, दोनों चीजें आपको बतानी है। और इस फिल्म से जुड़ी हुई कोई याद अगर आपकी है तो जरूर साझा कीजिएगा। और इसके साथ एक प्रश्न और हम आप तक पहुंचा रहे हैं, वो ये है ऐसा कौन सा किरदार है जिसे बचपन में आपने देखा था और सोचा था हम ऐसे ही बन जाएंगे।

हम ये सुंदर सा गीत सुन रहे थे और हमने आपसे प्रश्न किया था कि इसमें कौन किरदार है, फिल्म क्या है, बहुत सारी बातें इसमें हुई थी। लेकिन इसके पहले हम जो गीत सुन रहे थे डाकिया पर, उसके लिए हमारे श्रोता ने बहुत अच्छा लिखा है। बचपन में पिताजी दिल्ली अहमदाबाद में नौकरी पर जाते थे तो पत्र लिखते थे, उनका खत आता तो माँ को पढ़कर सुनाते थे। गाँव में डाकिया आता था जो घर घर चिट्ठियाँ बांटता था, गांव वाले उसकी बड़ी इज्जत करते थे। कॉलेज पढ़ने गए तो विवाह हो चुका था तो उनकी पत्नी की सहेली खत भेजती थी और हम उसका जवाब भेजते थे। क्या बढ़िया बात है ना, जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है ना याद करने के लिए। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, राजेंद्र कुमार डॉक्टर के रूप में, मीना कुमारी नर्स के रूप में, दिलेक मंदिर में बहुत ही शानदार फिल्म रही है। इसमें नाव पर बैठकर जो गीत है जी, बहुत खूबसूरत गीत है, हमने भी सुना है। इसके साथ ही हमारे श्रोता ने लिखा है कि पोस्ट ऑफिस बंद हो गए हैं अधिकतर गांव में और पोस्ट कार्ड अंतर्देशीय और लिफाफे आने भी बंद हो गए हैं, इस बात की ये चिंता भी कर रहे हैं और चिंता होना चाहिए। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, आखिरी खत कब लिखे थे ये तो याद नहीं, पिछले साल गाँव गए थे तब पिताजी को 1978 में लिखा, अंतर्देशीय मिला, उसे संभाल कर रखे हैं। इंक पेन से इसे सजाया हुआ बड़ा सुंदर सा पत्र इनके पास में है और जिसके बारे में ये चर्चा कर रहे हैं। और अब हम आ जाते हैं अभी इस गीत की तरफ जो अभी हम सुन रहे थे, बड़ा सुंदर सा, बड़ा मोहक सा, बड़ा प्यारा सा गीत, जिसके लिए हमने आपसे पूछा कि जो भी आपने देखा है, यानी इन सब इस किरदार को देखा है, तो ये गाइड फिल्म का, राजू गाइड का, देव आनंद का किरदार है और इसने रोजी के लिए ये गीत गाया है, ये हमारे एक और श्रोता बता रहे हैं। बहुत सुंदर गीत है और इसके साथ हमारे श्रोताओं ने बताया है कि सबसे ज़्यादा अभिनेता जयराज ने सबसे ज़्यादा फिल्मों में इंस्पेक्टर बने हैं और उन्हें विनोद खन्ना को इंस्पेक्टर की वर्दी में देखना अच्छा लगता है। क्या बढ़िया बात है। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे बहुत प्यार से उत्तर देखे हैं और हमारे श्रोता कह रहे हैं कि उन्होंने गाइड देखी थी और बचपन से डॉक्टर बनने का सपना देखा था। कितना अच्छा था ना, हम सपने भी उनके साथ जी लेते थे कई सारे। और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे ढेर सारे उत्तर दिए हैं, पर हमें ऐसा लगता है कि हमें अगले गीत की तरफ बढ़ना चाहिए। और एक बात और हमारे श्रोताओं के पास से आ रही है, बात ऐसी, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी की असली दौलत केवल रोटी कपड़ा और मकान नहीं, बल्कि वो छोटे छोटे सपने, रिश्तों का अपनापन, चेहरे खिलौटने वाली मुस्कान है जो हर दिन को खास बना देते हैं। यही जीवन के रंग हमारी फिल्मों को भी में भी बड़े सलीके से सहेजे हैं। कभी सफेद कोट में डॉक्टर, कभी सादगी भरे शिक्षक, कभी खाकी वर्दी में पुलिस अधिकारी, तो कभी सुरों की महफिल सजाते गायक, गायिका, स्वाद बिखेरता हुआ बर्ची, तो मुसाफिरों का हम सफर बनता टूरिस्ट गाइड। हर अभिनेता में अपने अपने अंदाज में अलग अलग अमिट छाप छोड़ी है। बिल्कुल सही बात है। अब इसके साथ ही कई सारे सुखद क्षण हैं, कई सारी कल्पनाएं हैं, कई सारी चीजें हैं। अब एक बात हम सोचते हैं कि अगर एक अभिनेता किसी किरदार को निभाने के लिए जाता है तो वो कितनी मेहनत करता होगा, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है फिर भी वो डॉक्टर बन रहा है, वो पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है फिर भी वो पुलिस इंस्पेक्टर बन रहा है, वो डाकिया नहीं है या वो वकील नहीं है या वो किसी भी काम को नहीं कर रहा है, पर उस किरदार को पूरी तरह से समझ रहा है कि वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, किस तरह से बात करता है, उसका मुड़ने का अंदाज क्या होगा, हर बात को ध्यान में रखा जाता है। इसीलिए तो अभिनेता उस किरदार को बिल्कुल हूबहू

सकते, परंतु हम आप तक अगला गीत जरूर पहुंचा सकते हैं। और अगला गीत जो है वो आप सुनेंगे, इसमें हम जो किरदार है वो डॉक्टर का है और गाना जो गा रहा है वो मरीज गा रहा है। अब उस डॉक्टर का किरदार किसने निभाया ये बता दीजिएगा, और ये बता दीजिएगा कि इस गीत के गायक कलाकार कौन है, गायक बता दीजिए और जो डॉक्टर हैं उनका नाम बता दीजिए। वैसे इस फिल्म में दो डॉक्टर हैं, अगर दोनों का नाम बता देंगे तो अच्छा लगेगा, दोनों अभिनेताओं का नाम बता देंगे तो अच्छा लगेगा। और इस गीत के साथ मेरा एक और प्रश्न मन में चल रहा है कि कोई ऐसा किरदार, कोई ऐसा काम जो सोचा था और पूरा हो गया और सच में आपने वो किरदार निभाया हो, जरूर से बताइएगा। बताइए इस गाने को किसने गाया और इस फिल्म में डॉक्टर का जो किरदार है वो किन्होंने निभाया।

हम सुन रहे थे फिल्म आनंद का ये गीत, योगेश के बोल, सलिल चौधरी का संगीत। और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत को गाया किसने, तो आपने सही उत्तर दिया, गायक कलाकार का नाम है मुकेश। और इनके गाने के इस गीत के साथ में कुछ संदेश हैं, उन सब संदेशों को मिलाकर हमारा अगला उत्तर बन जाता है। हमने आपसे पूछा था कि इसमें डॉक्टर की भूमिका किसने निभाई, तो हमारे श्रोता ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया कि मरीज आनंद फिल्म में, जिस फिल्म में अमिताभ बच्चन डॉक्टर हैं और साथ में भास्कर बनर्जी नाम के डॉक्टर का किरदार वो निभा रहे हैं, और डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी का किरदार रमेश देव निभा रहे हैं। उसके साथ में बताया कि ललिता पवार एक सहृदयी नर्स का जो किरदार है जी, जहां पर उन्हें माँ का एक उपाय दिया गया है, माँ का एक पद दिया गया है, उस पद के साथ में उसे निभा रही हैं। ये सारी सूचनाएं आप सभी देते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि हमारे श्रोता कितने ज्ञानी हैं, कितना नॉलेज है उन्हें, हर विषय पर आपके पास में ज्ञान है। और ऐसे ही एक और ज्ञान हमारा और हमारे श्रोता का मिल गया जो हमें बहुत अच्छा लगा पढ़कर। उन्होंने बताया कि अगला जो गाना हम आपको देने वाले हैं उसके बारे में बताया, पर उसके पहले एक दो संदेश हैं जो पढ़ लिए जाने चाहिए। हमारे श्रोता लिखते हैं, प्राण की भूमिका हमेशा विलेन और हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े वाले काम होते थे, और पर्दे पर प्राण को देखकर मन खराब हो जाता था, और उपकार जंजीर फिल्म में वो अलग रूप में ही दिखे। हालांकि ऐसा उनके साथी कलाकार कहा करते थे कि ये सबसे बढ़िया इंसान थे, व्यक्तित्व थे, लोगों की मदद में लगे रहा करते थे। हमारे श्रोता कह रहे हैं, साप्ताहिक सत्संग में ढोलक हारमोनियम वादक की कम उपस्थिति होने के कारण। अच्छा जी, कुछ उन्होंने संदेश भेजा है, उसे जरूर पढ़ लीजिएगा। हमारे एक श्रोता ने बताया कि उनके पतिदेव का पसंदीदा गीत है, हम उनसे हमेशा फरमाइश करते हैं कि वह गाया करें। ऐसे ही बहुत सुंदर सा गीत है बाबू मुशाई, इस गीत के साथ में हम इस गीत को इस शब्द के साथ याद करते हैं। और चलिए अब हम चलते हैं उस अगले गीत की तरफ जिसमें हमारे श्रोता ने भी बताया और ये गीत हमने भी छांट के रखा था कि एक अभिनेता या एक अभिनेत्री किसी एक ही फिल्म में 1, 2, 3, 4, 5 या कई सारे अन्य किरदारों को भी निभा लेते हैं। और ऐसा ही एक फिल्म नया दिन नई रात में संजीव कुमार 9 अलग किरदारों में दिखे हैं। तो चलिए हम ये वाला जो गीत है वो आपको सौंप रहे हैं, और आप याद कीजिए ऐसी कौन सी फिल्में देखी हैं जिसमें एक ही व्यक्ति ने कई सारे किरदार निभा लिए हों, वही पुलिस वाला भी बन गया हो तो वही गुंडा भी बन गया हो, कौन जाने कि वही व्यक्ति एक सामान्य किसान हो, थोड़ी देर बाद उसका ही बहरूपिया आ गया हो, है ना, किसी और रूप में। ऐसे कई सारी बातें होंगी आपके मन में, तो जल्दी से हमें बताइए, एक ही प्रश्न दे रही हूं इस बार में आपको, जल्दी से बताइए ऐसा कौन कौन से किरदार आपको याद है, ऐसी कौन कौन सी फिल्में आपको याद है जहां पर बहुत सारे किरदार एक ही अभिनेता ने या अभिनेत्री ने निभाए हैं। बहुत मेहनत लगी होगी ये काम करने में, पर किया तो होगा, चलिए बताइएगा जरूर।

हम सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत, और इस गीत में हमने बस आपसे ये पूछा था कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन कौन से किरदार हैं जो कई लोगों ने कई बार निभाए हैं, एक ही अभिनेता ने कई सारे किरदार निभाए हों, तो ऐसी भी कई फिल्में हैं। तो संजीव कुमार को ही याद किया लोगों ने, और बड़े अच्छे से हमारे श्रोता ने बताया कि अंगूर में जो उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई है, जी बिल्कुल, बड़ी मजेदार भूमिका रही है वो। और हमारा दिमाग भी कुछ समय के लिए घूम जाता है, पर जब पूरी फिल्म देखते हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ ही जाती है। तो इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बताया कि राजेश खन्ना फिल्म सच्चा झूठा, दिलीप कुमार राम श्याम, हेमा मालिनी सीता गीता, और हमारे श्रोता ने जो बात बताई थी वह भी यहीं पर है कि बहुत अच्छे से राम श्याम, गोरा काला, हम दोनों इज्जत, जॉनी मेरा नाम जैसे फिल्म का नाम लिया कि कॉमेडी में ट्रिपल रोल, पहला राम, दूसरा राम, तीसरा राम का आयस जौहर ने, अभिनेता आयस जौहर ने इस किरदार को निभाया था। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा किरदार था और बड़ा आनंद के साथ था। इसमें मलयालम अभिनेता जॉनसन जॉर्ज ने फिल्म अरानु नजान में अभिनय की मात्रा 45, एक ही अभिनेता द्वारा 45 अलग अलग अभिनय किए गए एक ही फिल्म में, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने आखिरी रास्ता में अभिनेता अमिताभ बच्चन ने 3 अलग अलग भूमिकाएं निभाई। ऐसे करके हमारे श्रोताओं ने सच्चा झूठा, राम श्याम, सीता गीता, इन सभी फिल्मों की फिर से जिक्र किया है। गोविंदा को देखा था फिल्म हद कर दी आपने में, दादा दादी, माँ पिता, बहन, सारे रोल उन्होंने ही किए थे। जी जुड़वा, बेटों की तेहरी भूमिका कई सारे निभाए हैं अमिताभ बच्चन ने, इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं फिल्म महान के बारे में। राज, राणा, रणवीर, इंस्पेक्टर शंकर और गुरु, दूसरा बेटा जो एक स्टेज एक्टर है, इसके बारे में। आंटी नंबर 1 के बारे में जिक्र हो रहा है, कई सारी फिल्मों के बारे में जिक्र हो रहा है, और इन सब

फिल्मों के साथ में एक और है रेलवे इंजीनियर, ये भी बड़ा अच्छा काम करते हैं और इनका बर्निंग ट्रेन में विनोद खन्ना ने इस किरदार को निभाया, ऐसे हमारे श्रोता बता रहे हैं। पर देखिए कितनी सारी बात होती है ना, कितनी अच्छी बात होती है ना कि हमारे ये किरदार हमें कई लोगों से जोड़ देते हैं, कई किरदारों से जोड़ देते हैं। अब अगर हम तारे जमी पर की बात करें तो वहां पर एक शिक्षक है और एक बालक है, दो अलग अलग किरदार निभा रहे हैं और दोनों किरदार हमें ये बता रहे हैं कि हमें किस तरह से बच्चों को संभालना है। अगर हम सोनम कपूर की बात करें तो एयर हॉस्टेस बनती है नीरजा 2016 की इस फिल्म में और क्या बढ़िया किरदार निभाती है। नासा के वैज्ञानिक के रूप में शाहरुख खान दिखाई देते हैं, ये हमारे श्रोताओं ने बताए, उन्हीं में से हम जिक्र कर रहे हैं कि शाहरुख खान नासा के वैज्ञानिक बनते हैं स्वदेश फिल्म में और वह बताते हैं कि अपना देश कितना अच्छा है, कैसे आना है वापस, वो किसी तरह से वह वापस आ जाते हैं। नायक द रियल हीरो में अनिल कपूर एक दिन के मुख्यमंत्री बनते हैं और वह बड़े अच्छे से उसके बारे में बताते हैं। एक और फिल्म का जिक्र हमारे श्रोता कर रहे हैं अनुरोध, वह कहते हैं कि राजेश खन्ना ने पर्दे पर अपने असली नाम को छिपाकर छद्म नाम से अपने गायन को प्रदर्शित किया है और बहुत बढ़िया गीत गाए हैं। जी बिल्कुल, हिचकी फिल्म में रानी मुखर्जी ने उन लोगों की समस्या को भी बताया जो बराबर से लगातार बोल नहीं सकते, बीच बीच में अटकते हैं या कोई समस्या आती है, वो कई बार हम भी हंस देते हैं उनके ऊपर तो हम भी गलत हो जाते हैं, है ना। कितनी सारी चीजें हमें फिल्मों से देखने और सीखने को मिलती हैं। वह एक श्रोता बताते हैं कि पिंक में अमिताभ बच्चन ने एडवोकेट दीपक की और फिल्म जॉली LLB में अरशद वाशी ने, फिल्म बंदा में मनोज बाजपेयी ने एडवोकेट पीसी सोलंकी का किरदार, फिल्म मुल्क में ऋषि कपूर और तापसी पन्नू, फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू में अभिनेत्री यामी गौतम ने एडवोकेट की गुलजार रिजवी का और फिल्म दामनी में अभिनेता सनी देओल ने एडवोकेट की गोविंद का जो आइकॉनिक प्रसिद्ध किरदार निभाया था उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्ती फिल्म का जिक्र किया जा रहा है कि नाना फलसी ककर ने इस एक शिक्षक का किरदार निभाया था शर्मा जी का और किरदार रामनाथ गुप्ता रामू का संरक्षक बनकर उसकी पढ़ाई में सहयोग किया था। हमारे लिए कितनी सारी शिक्षाएं इन सबसे मिलती हैं, ऐसी कोई शिक्षा अगर किसी किरदार से आपको मिली है तो जरूर साझा कीजिएगा और बताइए कि अगला जो गाना है वो अगले गाने में हमारा जो किरदार है वो किस किरदार को निभा रहा है और उसके साथ साथ कौन सा व्यापार कर रहा है, दोनों चीजें आपको बतानी है। वो किरदार गायक अभिनेता कुछ भी हो सकता है उस फिल्म में और उसके साथ साथ वो एक काम भी कर रहा है अपना पेट पालने के लिए, बताइएगा वो काम क्या है।

हम सुन रहे थे ये गीत आला फिल्म से यशुदास की आवाज में, और इसको संगीतबद्ध किया जयदेव ने। हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म के कौन से किरदार को ये सभी बड़े अच्छे से निभा रहे थे, इसमें जो अभिनेता हैं, तो आप सबने बताया कि अमिताभ बच्चन ने कवि और गायक का किरदार निभाया, और हमारे श्रोता ने बताया कि अहीर भैरव राग है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से आप रागों के बारे में जानते हैं और आप जानकारी देते भी हैं, उसके लिए धन्यवाद। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि इसमें बिजली मिस्त्री बने हैं और सौदागर में गुड़ बेचते नजर आ रहे हैं। हालांकि इसमें उन्होंने तांगा यानी वो घोड़ा गाड़ी वाला जो तांगा है उसे भी चलाया है जब अपने खुद के पिता को अपने घर तक उन्हें छोड़ने के लिए आते हैं। तो ये भी एक बढ़िया बात है कि एक पुत्र बगावत करता है लेकिन अपने संगीत के लिए बगावत करता है और संगीत के लिए जीता भी है। हमारे श्रोता ने बताया बनारस का गबरू जबान फिल्म घातक में सनी देओल मुंबई शहर पहुंचकर अजब की भूमिका निभाई है। दाग में राजेश खन्ना ने व्यक्ति दोहरी भूमिका निभाई है। हमारे श्रोता बहुत सारी बातें कर रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं देश की सेवा में फौजी का रोल करने वाले धर्मेंद्र फिल्म हकीकत में बेहतरीन अभिनय किया था। जी आखिरी रास्ता में दो अमिताभ थे, महान में तीन अमिताभ थे। बहुत सारी बातें आप जानकारी दे रहे हैं, प्रियंका चोपड़ा के बारे में जानकारी भी आप दे रहे हैं। इसके साथ ही आपने नई फिल्मों पुरानी फिल्मों की जानकारी दी है। साल 1960 में आई फिल्म जमीन के तारे के बाल कलाकार हनी ईरानी और डेजी ईरानी को कैसे भुला सकते हैं। यह अमीर और गरीब बच्चे की कहानी है जो जिंदगी से निराश होकर हिमालय में भगवान का घर अपनी स्वर्गीय माँ को ढूंढने के लिए ट्रक में चढ़ जाते हैं, तो ड्राइवर पूछता है ओ मेरे प्यारो जमीन के तारों जाना तुम्हें कहाँ, तो बच्चे उत्तर देते हो गाड़ी वाले ले चलो हमें वहाँ, मैया हमारी है जहाँ। बिल्कुल सही बात है, सुंदर से गीत तो सुंदर सी बातें यहीं से हमें सीखने के लिए मिलती हैं। इसके साथ ही चलिए हम अगला गीत आपको जल्दी से सौंप देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं ये गीत आप जरूर सुने। आपको कौन सी माँ यानी फिल्मों में, आपकी माँ तो आपको सबसे अच्छी लगती ही होगी, पर ऐसी कौन सी अभिनेत्री हैं जो माँ का किरदार निभाते हुए आपको सबसे अच्छी लगी हैं, जरूर से बताइएगा। हालांकि हमारे श्रोता ने पहले ही भेजा है कि उन्हें निरुपा रॉय और दुर्गा कोटे जी जो फिल्मों में अभिनय करती हैं माँ का, वो बहुत अच्छा है। और उन्होंने इस गीत की बारे में भी कहा है कि पिता के किरदार में बलराज साहनी हैं, उनके अभिनय का मुकाबला कोई कर नहीं सकता, तो ये बहुत सुंदर सा गीत है। ये गीत आपके लिए, आपकी माँ के लिए, आपकी माँ के साथ आपके प्रेम के लिए, पर इसके साथ एक उत्तर देना है, कौन सी ऐसी महिला है जो माँ के रूप में आपको फिल्म के पर्दे पर अच्छी लगती हैं, बताइएगा। और बताइएगा इस गीत के गायक कलाकार कौन है।

ये सुंदर सा गीत हम सुन रहे थे और याद कर रहे थे, इसके साथ साथ अपनी अपनी माँओं को भी हर माँ ने कितना प्यार दिया है और आप सब ने कई सारी माँओं को यहाँ पर पसंद किया है और उन माँओं में से आप सब ने बड़े प्यार से बताया हमें कि किसी को वहीदा रहमान पसंद हैं, अभी जो माँ का किरदार कर चुकी हैं राखी गुलजार आपको पसंद हैं, तो किसी ने कहा कामिनी कौशल का किरदार आपको बड़ा पसंद आया है माँ के रूप में, किसी को साधना जी, किसी को अलग अलग सुलोचना जी, दुर्गा कोटे जी, अलग अलग किरदार बड़े लोगों को पसंद आए हैं और माँ का किरदार करना इतना आसान नहीं होता, माँ का किरदार करने के लिए माँ बनना पड़ता है और लोग बने हैं। और अंत में मैं आपको ये गीत सौंप रही हूँ वहीदा रहमान की फिल्म खामोशी से जो नर्स का रोल उन्होंने निभाया है, उस नर्स के किरदार को याद करते हुए सुनिए ये गीत। अगर बता सके तो बताइए कि इसके गायक कलाकार कौन है।

0: undertake the yatra only on the date mentioned in their permit. Tatkal or on-the-spot registration is available only in limited numbers and subject to availability, the administration clarified. Unregistered pilgrims have been urged not to proceed towards the yatra route and wait for their confirmed travel date. In Jammu and Kashmir, police said that one terrorist has been killed in an encounter with security forces in Chanapura area of Shopian. Police said that the operation was conducted jointly with the army and the CRPF. Iran has launched retaliatory strikes on U.S. military installations following the U.S. attacks on its Hormozgan province and the port city of Mashhad. According to Iranian media, the Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC Navy and Aerospace Forces carried out a joint missile and drone operation targeting 85 U.S. military facilities. The reported targets included Salman Port, the U.S. 5th Fleet headquarters in Bahrain, and the Al El Salem Air Base in Kuwait. Iranian media also quoted an IRGC spokesperson as saying that the country's air defense systems had shot down a U.S. MQ-9 drone over Bushehr province. Earlier, the U.S. carried out a fresh round of airstrikes on Iran, targeting more than 80 locations in response to Iran's latest attacks on commercial ships passing through the Strait of Hormuz. Global crude oil prices rose more than 2% today as renewed hostilities between the United States and Iran threatened to shatter the fragile ceasefire that had brought some relief to global energy markets. Brent crude was trading nearly 2.3% up at $75.87 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 2.2% up at $71.96 per barrel when reports last came in. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.8% down in the afternoon session today amid renewed geopolitical tensions in the West Asia. The Sensex plunged 590 points to 77,591, while the Nifty shed 185 points to 24,213 when reports last came in. And in football, Switzerland beat Colombia 4-3 in a penalty shootout in Vancouver to reach the quarterfinals of FIFA World Cup for the first time since 1954. With this win, Argentina will play against Switzerland in the quarterfinals. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi visits UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta, says India's participation in temple's conservation reflects shared cultural legacy of the two countries. Prime Minister Modi concludes his Indonesia visit, leaves for Australia to participate in third India-Australia annual summit. Two-day BRICS Women Ministerial Meeting begins in Kochi to strengthen cooperation on women's empowerment and sustainable development. Union Home Minister Amit Shah speaks to chief ministers of flood-affected states and assures all possible assistance from the centre. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms over central and eastern parts of the country. Iran targets American military sites in Bahrain and Kuwait after a wave of US strikes. Global oil prices jump over 2%. And Switzerland beat Colombia 4-3 in penalty shootout to set up quarterfinals against Argentina in FIFA World Cup. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्यकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न, तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में 2% से अधिक की बढ़ोतरी। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्याकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांबनन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रांबनन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
2: एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
1: भारत और इंडोनेशिया ने उच्च शिक्षा में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए अब रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेलबर्न स्थित प्रख्यात फार्मासिस्ट और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य दीपक संघवी ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अपने विचार साझा किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोची में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भाग ले रहे मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा करेंगे और शिक्षा मंत्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व आधारित विकास में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। प्राधिकार पत्र वर्ष 2026 के भारतीय ध्वज वाले मत्स्य पोतों द्वारा खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन संबंधी दिशा निर्देशों के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली एनसीआर में 5 परिसरों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये छापेमारी सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में चलाया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में पता चला है कि बिल्डरों ने सब्सिडी योजनाओं के नाम पर मकान खरीदारों और निवेशकों को धोखा दिया है। इससे यह भी पता चला है कि बिल्डरों ने पोजीशन तक कोई ईएमआई नहीं योजना शुरू की है, जिनके तहत घर खरीदारों ने आवास ऋण लेकर फ्लैट बुक किए। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैटों का पोजीशन नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इस मामले में गिरफ्तार 3 अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चनापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अल नीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अल नीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि मॉनसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में भी बातचीत की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की। श्री सतीशन ने कहा कि श्री शाह ने स्थिति का जायजा लिया और राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केरलम के मुख्यमंत्री ने बताया कि गृहमंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता पर बल दिया है। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। 5 लोग अभी भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। लद्दाख में स्थानीय मौसम विभाग ने नालों में तेज और अचानक जलधाराओं के खतरे और बाढ़ की आशंका की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के एक खंड को 11 से 13 जुलाई तक अस्थायी रूप से एक दिन में 5 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL ने आपातकालीन मरम्मत कार्य और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20वें माइल बरदांग स्थित NH10 के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ये मार्ग 11 से 13 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। यह बंदी चल रहे आपातकालीन मरम्मत कार्य के कारण आवश्यक है। अधिकारियों ने इस दौरान यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी जोखिम की आशंका जताई है। यात्रियों के असुविधा कम करने के लिए NHIDCL ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की है। मानस प्रतिम शर्मा के साथ मोइनक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गांतोक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने होर्मुज़गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के पांचवें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। एक रिपोर्ट।
4: ईरान के बुशहर प्रांत में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजने पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इससे पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने इसे आक्रामकता और आतंकवाद का कृत्य बताते हुए जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी को इस पर नियंत्रण करने दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को दी गई तेल बेचने की छूट रद्द कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमरीकी हमले और कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का गंभीर उल्लंघन है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: और अब मौसम का भी रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 590 अंक फिसलकर 77,591 पर, जबकि निफ्टी 185 अंक गिरकर 24,213 पर था। और अब खेलों में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अंतरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सका। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा सम्पन्न। तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे आशिक फिल्म का यह गीत मुकेश की आवाज में शैलेंद्र की बोल और शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अगला गीत अपना बना के देखो फिल्म से, मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में, एसएच बिहारी के बोल और रवि के संगीत के साथ।

0: हम सुन रहे थे ये गीत हरियाली और रास्ता फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सदाबहार नगमे कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं बात एक रात की फिल्म से। सुमन कल्याणपुर की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देवर्मन के संगीत के साथ यह गीत।

0: हम सुन रहे थे कैलाशपति फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में। मदन ने इसे लिखा और अविनाश व्यास ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं अगला गीत, आजाद फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, राजेंद्र कृष्ण के हैं बोल और सी रामचंद्र का है संगीत।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो

0: छबिंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत। असली नकली फिल्म से लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत। और इसी गीत के साथ आज्ञा दीजिए मुझे यानी विधि जैन को। नमस्कार।

0: समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। प्रांबानन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांबानन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। ब्रिक्स महिला मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोची में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। इससे पहले महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर तथा सचिव अनिल मलिक ने पूर्ण सत्र में भाग लिया। केरलम के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन भी आज शाम सम्मेलन में शामिल होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा की। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की और राहत तथा पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। इस बीच मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले दो तीन दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार भारी बारिश हो रही है। आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज के साथ बादल बरसने, तेज हवाएं चलने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। प्रभास मंडल को एक नाबालिग लड़की के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या मामले में गिरफ्तार किया गया था। ईरान ने होर्मुज़गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के पांचवें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्वकप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी, डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today visited the UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta, along with Indonesian President Prabowo Subianto. The Prime Minister was accorded a traditional welcome with the resonant notes of a gamelan ensemble and a classical Yogyakarta dance performance, reflecting Indonesia's rich cultural heritage. The two leaders toured the 9th century temple complex, where Prime Minister Modi offered prayers at the main Shiva temple. In a joint statement, President Prabowo said, "Prambanan stands as a symbol of the centuries-old civilizational bond between India and Indonesia." He thanked India for its support towards the conservation and restoration of the temple complex and said culture continues to serve as a bridge connecting the two nations. Addressing the Prambanan Temple, Prime Minister Modi described the visit as a deeply spiritual and memorable experience.

0: 4-3 in a penalty shootout in Vancouver to reach the quarterfinals of FIFA World Cup for the first time since 1954. With this win, Argentina will play against Switzerland in the quarterfinals. And that is the end of this news bulletin.
1: Akaswani tura nga shimang delu ni khoda tsak ba english ko borang ko kna sona mana ha ta somo ya tamni ge tambaji mini chking wa ha aro inon talsana don so man program ko atani somo bu na pla tamni program ko puwa ba ji mini chot ponche to kna so ten man gen da jol tona shimang delu ni khoda tsak ba bibit ba ti program ko rcha sa sa ponch ni mega hertz ni fm channel lo kna kulam lat gen kna tum sing ba plak man salam
2: यूं ही गूंजती रहे ये आवाजें खुशियों का संदेश सुनाती रहें चंचल जी और मंदाकिनी जी के संग सखी सहेली यूं ही मुस्कुराती रहें
3: क्या बात है क्या बात है यानी हमारी सखियों को हमारे सखाओं को हमारी मुस्कुराहट भी यहाँ से दिख जाती है ना
2: ये जो, और ये जो सुनकर जो देखना होता है ना ये कई बार हम गानों में भी महसूस करते हैं कि किस तरह के जो भाव हैं और गायक जिस तरह से गाते हैं हम उसे पूरा महसूस कर पाते हैं हम देख पाते हैं चाहे हमने वो चलचित्र ना देखा हो लेकिन वो भाव जिस तरह से चल रहे होंगे अपने दिमाग में एक चित्र हम बना लेते हैं
3: बिल्कुल सही कहा आपने और उद्घोषक जो खासतौर से जब प्रोग्राम प्रेजेंट करता है तो हमारी श्रोता एक पिक्चर बना के चलते हैं कि भाई चंचल जो है कैसी दिखती होंगी चंचल लगती है कि नहीं और मंदाकिनी जी कैसी लगती है मुस्कुराकर बात कर रही है कि नहीं उनकी एक पिक्चर चलती है और वो उसी हिसाब से सोचते भी और हमें भी अच्छा लगता है जब हमारे श्रोता उस पिक्चर में हमारी सूरत देखते हैं बोलने का अंदाज देखते हैं तरीका देखते हैं तो चलिए अभी शिकायत करेंगे हमारे श्रोता की दोनों सखियां अपनी तारीफों में उलझ गई है ना तो अगर हम अपने जीवन में चंचल ये मूल मंत्र अपना लें कि बात बात पर हम शिकायत नहीं करें बल्कि हर बात के लिए शुक्रिया अदा करें तो शायद कहते हैं जिंदगी बहुत आसान बन जाती है और जिंदगी में हमें शिकायत नहीं कहते हैं शुक्रिया ज्यादा अदा करना चाहिए हमें दूसरों से तारीफ की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए और संसार की 90% समस्याएं बातचीत के असंतुलित लहजे से ही पैदा होती है
2: बिल्कुल सही बात है हमने बात को जिस तरीके से कहा अगर वो उसी तरह से सामने वाले तक पहुंची तब तो ठीक अगर शब्दों का थोड़ा भी हेर फिर उन्होंने अपने तरह से सोच लिया तो बात का पूरे मायने ही बदल जाते हैं और ये जो आपने कहा ना असंतुलित लहजा जो है इसी से फिर सारी शिकायतें पैदा हो जाती है और किसी ने कहा भी है कि हर लफ्ज महकता हुआ गुलाब है लहजे के फर्क से इसे तलवार ना बनाओ
3: क्या बात है क्या बात है बिल्कुल सही कहा अगर आप गुलाब की तरह अपनी बात कहते हैं तो वो वैसे ही पहुंचेगी और अगर उसे तलवार बना देते हैं तो फिर वो तलवार की तरह ही अगले को जो है कलम करने की
2: तो हमारी जो श्रोता हैं उनके शब्दों के तलवार ना चले इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं उनका कहना है कि शिकायतों के दफ्तर में अब ताला लगा दिया है जो मिला है झोली में उसे गले से लगा लिया है गिले शिकवे करने से बस दिल भारी होता है और शुक्राना करने से हर लम्हा प्यारा होता है
3: क्या बात है? वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायतें कम शुक्रिया ज्यादा अब यही जीने का सीधा सा वादा धूप अगर तीखी है तो छांव का भी तो एहसास है प्यास अगर लगी है तो घड़े में पानी भी पास है कांटों को गिनकर क्यों अपना दिल दुखाना फूलों की महक से ही तो महकता है जमाना क्या बात है हमारे सभी सखियों और सखा तो कवि बन गए हैं मुझे लगता है शायर बन गए हैं है
2: और इसी के आगे हमारे श्रोता ने लिखा है कि शिकायतें कम और शुक्रिया ज्यादा हम अक्सर करते हैं छोटी छोटी बातों पर शिकायत अरे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ और हम शुक्रिया तो अदा ही नहीं करते हमारे पास जो है उसमें हम संतुष्ट नहीं रहते हालांकि मैं इस बात को मान रही हूँ संतोष में रहना बहुत मुश्किल है आजकल का जमाना ही ऐसा है कि शिकायतें हो ही जाती हैं लेकिन हम अगर खुश रहने की कोशिश करें तो हमारे पास जो भी है उसमें हम खुश रह सकते हैं ये इतना मुश्किल भी नहीं होता और ऐसा ही करें कि छोटी छोटी बातों में शिकायत करने की जो आदत है उसके पास ये नहीं है हमारे पास ये नहीं है उसकी वाली इतनी अच्छी है हमारी वाली इतनी अच्छी नहीं है ये चीजें हमारे जीवन को मुश्किल और तनाव से भरा हुआ बना देती हैं इसीलिए हम खुद तो तनाव में इसे हम खुश तनाव में आते ही हैं खुश नहीं रहते लेकिन हम शिकायत करने से हमारा जो जीवन के प्रति नजरिया है वो भी खराब होता जा रहा है तो जारी है कि शिकायतें ना करें जो है उसमें खुश रहें आपके पास जो मिला है उसका हमेशा शुक्रिया अदा करते रहें और भगवान ने जो आपको दिया है उसके लिए धन्यवाद करें, शिकायत करना बंद कर दीजिए।
3: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायतें कम और शुक्रिया ज्यादा, हम अक्सर करते हैं छोटी छोटी बातों पर शिकायत। अरे ये नहीं हुआ, अरे वो नहीं हुआ, हम शुक्रिया अदा नहीं करते हैं, हमारे पास जो है हम उससे संतुष्ट नहीं रहते हैं। हालांकि मैं मान रही हूँ कि संतुष्ट रहना बहुत मुश्किल है, आजकल का जमाना ही ऐसा है कि शिकायतें हो ही जाती हैं, लेकिन अगर हम खुश रहने की कोशिश करें तो हमारे पास

0: जो है हम उससे खुश रह सकते हैं, बस ये इतना मुश्किल नहीं है। तो ऐसा ही करें, जो छोटी मोटी बातों में शिकायत करने की आदत है उसके पास ये है कि हमारे पास नहीं है, ये हमें खुद ही दुखदायी बना देता है। और बिल्कुल सही कहा कि जब हम किसी का अभिवादन करते हैं ना चंचल, जब हम किसी का शुक्रिया अदा करते हैं तो हमारा अहंकार भी समाप्त हो जाता है। और इसलिए हमारी जो भारतीय संस्कृति में बड़ों को प्रणाम करना सिखाया जाता है और दूसरों का आभार व्यक्त करना बहुत जो है अच्छा होता है, और हमें दूसरों से आशीर्वाद और दुआएं मिलती हैं और दुआओं के लेन देन से हमारी सफलता का जो है मार्ग प्रशस्त होता है।
1: अब हमारे श्रोता कहीं ये शिकायत ना कर दे कि भाई गाना नहीं सुनवा रही है सखी, सिर्फ बातें किए जा रही हैं। तो बातें भी करेंगे, संदेश भी पढ़ेंगे गाना सुनने के बाद।
0: चलिए

0: चल, भूलना तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर हमारा थोड़ा सा भी कोई काम कर देता है तो उसका शुक्रिया हमें हर हालत में अदा करना चाहिए, और किसी से थोड़ी सी मदद मिल गई तो उसका आभार व्यक्त कर दें। आभार और क्षमादान कहते हैं हमारे जीवन के दो बहुत महत्वपूर्ण आयाम हैं। आभार या शुक्रिया करने का मतलब है उसकी कद्र करना, यानी हम दूसरे का आदर तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर उनके प्रति स्वीकार्यता का भाव होगा। हम स्वीकार करेंगे उनकी सहायता को, उनको। तो जब जब हम किसी को धन्यवाद कहते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक सोच जागृत हो जाती है।
1: और इसी तरह से जो शिकायत का भाव है वो एक नकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। नकारात्मक हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तभी तो शिकायत मन में आती है। तो देखिए हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं कि भगवान या किसी भी उच्च शक्ति से शिकायत करने की बजाय शुक्रिया या कृतज्ञता व्यक्त करने से मानसिक शांति और सकारात्मकता बढ़ती है। जैसा भी आप भी बता रही थी, कृतज्ञता का अभ्यास करने से जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण आता है, तनाव कम होता है। शुक्रिया अदा करने से आपका ध्यान उन चीजों पर जाता है जो आपके पास है, न कि उनके पास जो आपके पास नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: शिकायत उस आम आदमी से भी नहीं, क्योंकि शिकायत भगवान से होनी चाहिए। अच्छा हुआ ये पल आपने मुझे दिखाया और उससे भी अच्छा कुछ मिलने की उम्मीद जगी। यानी कि हम उस भगवान से ही ये कहें कि भाई तुमने जो दिया है वही अच्छा।
0: हाँ, यानी भगवान को भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, शुक्राना अदा करना चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायत कम शुक्रिया ज्यादा, ये हमारे जीवन का मोटो हो तो हम परेशान नहीं होते, लेकिन ऐसा हमसे हो नहीं पाता। हम समाज और परिवार से शिकायत ही रखते हैं, इसकी जड़ में नहीं जाते, जिसका कारण हम खुद ही हैं। हमें बचपन से शिकायत मिलती है, हम बड़े होकर भी वही करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें संतुष्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए। शिकायत की भावना की जगह सहयोग की भावना हमारे अंदर आनी चाहिए। जो मिला है उसके लिए ईश्वर को शुक्रिया हमें अदा करना चाहिए।
1: इसी तरह से हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये जो शिकायत और शुक्रिया वाली बात है, ये सुखमय जीवन का मूल मंत्र है और इसके चलते जीवन यापन भी भली भांति किया जा सकता है, क्योंकि शिकायतें दर्ज करवाने की इस आदत अगर पड़ जाती है तो ये अच्छी बात नहीं है। और शुक्रिया अदा करने पर तो कोई लोग भी अगर शुक्रगुजार होते हैं तो उसे हम नेक और भला आदमी मानने लगते हैं। इस दृष्टिकोण से शिकायत करने वाले अपने आप में कमजोर होते जाते हैं, जबकि शुक्रिया अदा करने वाले व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है।
0: बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायत कम शुक्रिया ज्यादा करना चाहिए। भाई, ये तो सुखमय जीवन का मूल मंत्र है और इसके चलते जीवन यापन भी भली भांति किया जा सकता है, क्योंकि शिकायत जो दर्ज करवाते हैं उनको आदत हो जाती है कि हर वक्त वो शिकायत ही करते रहते हैं, और शुक्रिया अदा करने वाले जो लोग हैं वो तो भाई शुक्रिया ही अदा करेंगे और उसे नेक और भला आदमी हम मानते भी हैं। इस दृष्टिकोण से शिकायत करने वाला खुद ही जो है कमजोर होता जाता है।
1: आगे हमारे श्रोता लिखते हैं कि अब यही है जीने का सीधा सा वादा, धूप अगर तीखी है तो छांव का भी तो एहसास है, अगर प्यास लगी है तो घड़े में पानी भी पास है, कांटों को गिनकर क्यों अपना दिल दुखाना, फूलों की से हो तो महकता है जमाना।
0: बिल्कुल। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि शिकायत कम शुक्रिया ज्यादा। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं और मेरी धर्म पत्नी हमेशा माता रानी और प्रभु परमेश्वर का शुक्राना ही अदा करते हैं, क्योंकि देने वाली तो माता रानी ही है जो हमें देती है, और जो हमें देना चाहिए जो भी वो उन्हें मालूम होता है, तो शिकायत किस बात की। क्योंकि ये भी एक सच्चाई है कि वक्त से पहले और तकदीर से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, और हमारे जीवन में भी हम दोनों शिकायत कम और शुक्रिया ज्यादा करते हैं। ये भी हमने बच्चों को सिखाया है हर बार लघु कथाओं के माध्यम से। ज्यादातर मेरी धर्मपत्नी और मुझे जब भी समय मिलता है बच्चों को बताकर और समझाने की हम पूरी कोशिश करते हैं, है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि लगातार शिकायत करने से हमारे मस्तिष्क में नकारात्मक विचार घर कर जाते हैं, जिससे तनाव और मानसिक थकान बढ़ती है। सकारात्मक दृष्टिकोण, जब हम शुक्रिया धन्यवाद भाव देते हैं तो हमारा दिमाग जीवन के

0: सकारात्मक पहलुओं की ओर आकर्षित होने लगता है।
1: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि शिकायत दूरियां बढ़ाती है रिश्तों में, जबकि शुक्रिया का एक छोटा सा शब्द दिलों को करीब ले आता है। किसी की मदद के लिए धन्यवाद कहना, माता पिता के स्नेह के लिए आभार व्यक्त करना और मित्रों के लिए कृतज्ञ होना, ये छोटी छोटी बातें जीवन को सुंदर बना देती हैं।
0: बिल्कुल बना देती है। लेकिन एक श्रोता का मैं और विचार लेना चाहूंगी। ये लिखते हैं कि किसी बात पर निश्चित सकारात्मक भरोसा या तसल्ली देना, यानी आश्वासन। जीवन में आश्वासन मिलने पर मानसिक शांति और काम को प्रोत्साहन मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, हम भी तुम्हारे साथ हैं, ये वचन चंदन सी शीतलता देता है। खोखले और झूठी बातें बिल्कुल करना गलत बात है, बार बार ऐसा करने से समाज में हमारी कीमत कम हो जाती है, इसलिए हमें अच्छा बनना चाहिए और अच्छे आश्वासन देने चाहिए।
1: तो अभी गीत सुन ले।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सखी सहेली कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
0: जी।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली और हम फिर से हाजिर हैं लेकर हमारे श्रोताओं के बहुत सारे संदेश और उनकी बातें।
0: बिल्कुल, और इस वक्त हम बात करने वाले हैं कोटा डोरिया साड़ी के बारे में, है ना? तो कोटा डोरिया साड़ी जो है चंचल राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध और पारंपरिक हथकरघा यानी हैंडलूम साड़ियों में से एक मानी जाती है। कोटा डोरिया छोटे बुने हुए वर्गों में बने हुए हल्के बुने हुए कपड़े का नाम है जो अपनी हल्की फुल्की बनावट, पारदर्शिता और चौकोर डिजाइन जिसे खट कहा जाता है उसके कारण देश भर में प्रसिद्ध है।
2: ये बिल्कुल आपने बात सही कही कि भाई राजस्थान की तो बड़ी प्रसिद्ध साड़ी है और कोटा डोरिया का जो इतिहास है ना इस साड़ी का, ऐसा माना जाता है कि ये भी करीब करीब 300 साल पुराना रहा होगा। और ऐसा बताया जाता है मंदाकिनी जी कि 17वीं-18वीं जो शताब्दी थी उसमें राजस्थान राज्य के कोटा के महाराव ने दक्षिण भारत के जो खास तौर पर जो मैसूर क्षेत्र है ना वहाँ के कुशल जो कारीगर थे, जो बुनकर थे, उनको कोटा बुलाया और इन बुनकरों ने वहाँ के जो स्थानीय कारीगर थे उनके साथ मिलकर एक नई बुनाई तकनीक का विकास किया जिसमें सूती और रेशमी धागों को मिला जुलाकर कुछ इस्तेमाल किया गया था। और हाथ से बुनाया गया जो आरामदायक कपड़ा था इसमें बहुत चमक भी होती है और इस विशेष बुनाई से बनने वाले जो चौकोर जाल जैसे पैटर्न बनते हैं जिन्हें खट कहा जाता है आपने बताया, और कोटा डोरिया की ये पहचान बन गया।
0: बिल्कुल सही कहा चंचल, और कोटा डोरिया नाम कैसे पड़ा ये भी एक बहुत ही रोचक बात है कि कोटा राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर है जहां ये कला विकसित हुई और डोरिया का मतलब है डोरा यानी धागा जिसका मतलब है धागों से बुना हुआ महीन कपड़ा। तो शुरुआत में ये कपड़ा राजघरानों के लिए बनाया जाता था और लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो ये आम लोगों में भी लोकप्रिय होता चला गया
2: और सारी बातें हमारे श्रोता भी लिखकर हम तक पहुंचा रहे हैं। कोटा डोरिया जो साड़ी है इसे कोटा डोरी, कोटा साड़ी, कोटा मसूरिया ऐसे अलग अलग नामों से भी लोग जानते हैं और इन साड़ियों की खासियत ये होती है कि ये बहुत ही हल्की फुल्की और आरामदायक होती हैं। सूती और रेशमी धागों का सुंदर मिश्रण होने के कारण वैसे तो किसी भी मौसम में इन्हें पहन सकते हैं लेकिन गर्मियों में खास तौर पर बड़ा उपयोगी माना जाता है इन्हें पहनने के लिए। और राजस्थान जहाँ की गर्मी बहुत चिलचिलाती हुई होती है तो वहाँ की महिलाएं इसीलिए शायद इसे ज्यादा पसंद करती
0: हैं। बिल्कुल सही कहा, वहाँ जो लड़कियां हैं वो भी कोटा डोरिया के सूट भी पहनती हैं ताकि गर्मी का जो मौसम है वो आराम से निकल जाए।
2: और जब कोई साड़ी बहुत प्रचलित होती है ना उसके दुपट्टे भी चल जाते हैं।
0: हाँ, कोटा डोरिया के दुपट्टे भी बहुत प्रचलित हैं और बहुत सुंदर होते हैं लाइट शेड के सारे, जो हल्का रंग पसंद करते हैं ना उनके लिए तो बहुत खूबसूरत।
2: आजकल एक फैशन और भी है कि जब कोई खास समारोह होते हैं तो जब कुर्ता पायजामा पुरुष पहनते हैं तो उन पर भी दुपट्टा डालने का चलन है, तो जैसे और जो चीजें हैं ना बांधनी के डाले जाते हैं तो वहाँ कोटा डोरिया का दुपट्टा भी
0: डाला जाता है और बहुत सुंदर लगता है पुरुषों के साथ में साइड में रखा हुआ ये जो कोटा डोरिया का दुपट्टा है ये भी चार चांद लगाता है उनकी खूबसूरती में। और जालीदार बुनाई होती है इसकी बहुत हल्की, लगभग 250 से लगभग 400 ग्राम और ये बहुत हवादार होता है जो हमारे अभी आपने कहा कि गर्मियों में पहनने के लिए सबसे आरामदायक माना जाता है। और बाना की खास बुनाई के कारण इस पर छोटे छोटे चौकोर खाने बनाए जाते हैं जिसे खट अभी आपने बताया खट कहते हैं। उसकी सबसे बड़ी पहचान भी यही है, हाथ से बुनी होने के कारण हर एक साड़ी अपनी अलग सुंदरता लिए होती है।
2: और जितनी भी हैंडलूम या हथकरघा की साड़ियां हैं ना वाकई में वो बड़ी प्यारी लगती है देखने में भी और पहनने में भी। और इस तरह से एक साड़ी को जब बनाया जाता है तो बनाने में डिजाइन के अनुसार करीब 10 दिन से लेकर 3 महीने भी लग जाते हैं। कई बार होता है ना बहुत
0: बारीक काम होता है और थोड़ा सा खास समारोह के लिए जब बनाई जाती है तो उसमें टाइम लगता ही है।
2: और अपनी शुद्धता और कारीगरी के कारण इनकी जो कीमत है वो भी अलग अलग हो सकती है। हो सकता है आपको कहीं 10,000 से शुरू होकर मिले और कहीं इसके 10 गुना तक भी कीमत पहुंच सकती है।
0: बिल्कुल, और इसे हल्के में भी मिलती है, आप आम स्त्री भी इसे खरीद सकती है और उसके बजट में ये साड़ी शामिल हो सकती है। और कोटा डोरिया साड़ी को उसकी विशिष्ट पहचान के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही इसकी क्षेत्रीय पहचान भी है। इससे असली डोरिया साड़ी की पहचान और बुनकरों के हितों की रक्षा में थोड़ा मदद भी मिलती है और हजारों बुनकर परिवारों की आजीविका इसी उद्योग से चलती भी है।
2: कोटा के पास एक जगह है, छोटी सी कस्बा है कैथून, जहां पर कोटा डोरिया साड़ियां ज्यादा बनाई जाती है, वहीं इसका मुख्य केंद्र माना जाता है। इसके अलावा कोटा के आसपास के कुछ और भी क्षेत्र हैं जहां पर ये साड़ियां बनाई जाती हैं। कोटा डोरिया साड़ी राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और हथकरघा कला का महत्वपूर्ण प्रतीक है। देश विदेश में भी इसकी मांग बनी रहती है मंदाकिनी जी, और राजस्थान के हस्तशिल्प की कोई ये वैश्विक पहचान भी दिलवाती है।
0: बिल्कुल, और चंचल हमने तो ये भी देखा है बड़े बड़े पदों पर काम करने वाली जो महिलाएं हैं ना, कोटा डोरिया की साड़ी को पसंद करती है, क्योंकि बहुत ही ग्रेसफुल साड़ी है ये, बहुत ही अच्छी लगती है पहने हुए। और कोटा डोरिया साड़ी केवल परिधान नहीं बल्कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, पारंपरिक बुनाई की एक कला है और बुनकरों की पीढ़ियों से चली आ रही मेहनत का एक जीवंत प्रतीक भी है। और इसकी हल्की सी बनावट, आकर्षक इसकी डिजाइन और उत्कृष्ट हस्तशिल्प से इसे भारतीय वस्त्र परंपरा में एक खास स्थान भी मिल चुका है।
2: तो भाई, क्योंकि गर्मियों में इसे खास पसंद किया जाता है, तो जहाँ बारिश नहीं है गर्मी है, वहाँ के लिए थोड़ी सी रिमझिम फुहार पहुँचा दी जाए।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो चंचल, बात चल रही थी
3: कोटा डोरिया साड़ी के लिए और इस बारे में हमारी सखी लिखती हैं कि कोटा डोरिया साड़ी मैंने बहुत पहनी है, बहुत हल्की और गर्मियों में आरामदायक होती है और बहुत ही शानदार लगती है।
2: क्या बात है, बहुत बिल्कुल सही कहा आपने। जिन महिलाओं ने कोटा डोरिया को पहन लिया एक बार, तो उनकी चॉइस में कोटा डोरिया साड़ी हर बार होती है।
3: और जो हमारे सुनने वाले हैं वो भी आश्वस्त हो गए हैं इस बात को लेकर कि कोटा डोरिया साड़ी अगर वो खरीदते हैं तो ये फैसला उनके लिए गलत साबित नहीं होगा।
2: हाँ, यानी आपने आश्वासन दे दिया उनको।
3: और आश्वासन को लेकर बहुत सारे संदेश भी आ रहे हैं। आश्वासन की अगर हम बात करें, जिसे अंग्रेजी में अश्योरेंस कहते हैं, इसका सरल अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति को विश्वास दिलाना या भरोसा देना, ये कहना कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा या उसकी सहायता की जाएगी या किसी कार्य के पूर्ण होने के या परिणाम सही होने के विश्वास दिलाने के लिए भी हम आश्वासन शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: बिल्कुल सही कहा, जब कोई व्यक्ति परेशान होता है, डरावा होता है या असमंजस में होता है, तब उसे हिम्मत और भरोसा देने वाली बात को ही हम आश्वासन कहते हैं। और आश्वासन मतलब विश्वास पैदा करना होता है चंचल। डर और चिंता किसी की अगर हम कम कर देते हैं, मन में साहस और उम्मीद जगाते हैं, संबंधों को हम मजबूत बनाते हैं, तो ये एक आश्वासन है।
3: इसीलिए हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मैं हूं ना, आश्वासन के 3 शब्द हमारे जख्मों पर मरहम का काम करते हैं, हमारी परेशानियों को आधा कर देते हैं, किसी भी लड़ाई के लिए हमें बहुत सारी ऊर्जा प्रदान करते हैं।
2: बिल्कुल, और देखा आपने चंचल की जो हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे शिक्षक, वो अपने छात्रों को यानी हमें आश्वासन देते हैं कि हम आपको अच्छा पढ़ाएंगे बच्चों, पर आपको पढ़ना है और आपको पास होना है। और डॉक्टर भी जो है पेशेंट को, मरीज को एक आश्वासन देता है उसके परिवार को कि भाई ये ठीक हो जाएगा, बस हमारे कहे से आप दवाएं देते रहिए और इलाज करते रहिए। और हमारे माता पिता हमारे लिए हर वक्त हर परिस्थिति में साथ खड़े रहते हैं और वो हमें आश्वासन देते हैं कि बेटा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
3: ये जो आपने 3 उदाहरण अभी हमें दिए, एक शिक्षक का, एक चिकित्सक का और एक माता पिता का, सही बात है, ये आश्वासन अगर मैं ना दें तो लगता है कि बहुत कुछ अधूरापन सा या लगे हम हार गए हैं। अगर हमारा कोई प्रियजन अस्पताल में है और डॉक्टर हमें आश्वासन ही ना दे उनके सही होने का, तो वहीं हम चिंता में घुलते रहेंगे कि इनके स्वास्थ्य का क्या होगा
2: और जिंदगी बहुत अजीब सी हो जाती है। अगर हमारे माता पिता हमारा साथ छोड़ दें तो सोचो क्या हो एक बच्चे की जिंदगी। लेकिन वो कभी साथ नहीं छोड़ते हैं, जिंदगी के आखिरी पल तक वो अपने बच्चे का साथ देते हैं।
3: इसीलिए हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आश्वासन भरोसा तसल्ली या पक्का विश्वास दिलाना है, किसी व्यक्ति को उसकी चिंता या शंका से मुक्त करने के लिए आश्वस्त करना कि सब ठीक हो जाएगा या तुम्हारा कार्य निश्चित रूप से पूरा कर लिया जाएगा, विकट परिस्थितियों में अगर कोई ये सब कुछ कहता है तुम निश्चिंत रहो तुम्हारा काम हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ा आश्वासन होता है उस पल के लिए।
2: बिल्कुल आपने सही कहा, हम किसी ऑफिस में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं या नौकरी करते हैं, हमारे साथी लोग हमें आश्वासन दे देते हैं, भाई आपका ये काम मैं कर दूंगी, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जब व्यक्ति बहुत परेशान होता है तो एक छोटा सा आश्वासन डूबती नैया को किनारा सा लगता है। क्यों दुखी हो, मैं हूं ना, ये शब्द दुखती रग को आराम देते हैं। आश्वासन अगर देकर निभाया जाए तो कुछ बात और है, नहीं तो ऐसे कहकर मुकर जाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं।
3: आगे हमारे श्रोता लिखते हैं एक अन्य संदेश में कि आश्वासन विश्वास रूपी एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके सेवन से सामने वाले को भरोसा बैठ जाता है और तसल्ली होती है कि उसके द्वारा होने वाला कार्य निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगा। जब परिस्थिति उनके पक्ष में होती है तब एक मजबूत व्यक्ति का आत्मविश्वास यानी मनोबल इससे मजबूत हो जाता है।
2: वही एक श्रोता ने लिखा है कि आश्वासन इंसानियत की वो भाषा है जो बिना किसी लागत के किसी का जीवन बदल सकती है। हमें दूसरों को ढांढस बंधाने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, लेकिन साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शब्द सिर्फ होठों से नहीं निकले बल्कि वे सीधे हमारे दिल से आए और हमारे कर्म में बदल जाए। ऐसे बहुत से कम लोग हैं चंचल
3: जी,
2: है ना, कथनी और करनी में फर्क हो जाता है।
3: लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाता है तो उसका साथ आप कभी ना छोड़े। आगे एक संदेश में हमारे श्रोता ने लिखा है कि आश्वासन शब्द की सार्थकता उसकी प्रामाणिकता में है। यदि इसके पीछे सच्ची सहानुभूति और प्रयास करने की नियत है तो ये संजीवनी की तरह काम करता है, लेकिन यदि ये केवल एक जिम्मेदारियों से बचने का जरिया मात्र बनकर रह जाए तो मानसिक चोट भी पहुंचाता है। यानी आश्वासन देने से पहले अपनी क्षमता और नियत को टटोलना बेहद ही जरूरी है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। और वहीं एक श्रोता लिखती हैं कि आत्म मंथन आत्मनिरीक्षण करते हुए ईश्वर का हमें धन्यवाद देना चाहिए और साथ ही जो है ये भी देखना चाहिए कि हमने किसे आश्वासन दिया है, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा, ये जो कहावत है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
3: चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।

0: आज के मेहमान। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविक भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, कथाकार, व्यंगकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक और अनुवादक संपादक हरिशंकर जी राढ़ी साहब को। हरिशंकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका मंदाकिनी जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
1: आज हम बात कर रहे हैं आपकी साहित्यिक कृतियों पर कि आपने क्या लिखा, कैसे लिखा, क्यों लिखा। राढ़ी साहब, एक व्यंगकार और यायावर ललित निबंधकार कैसे बन जाता है, ये मैं जानना चाहती हूँ।
2: ये आपने ऐसा प्रश्न पूछा है कि सही पूछिए तो इसका सही उत्तर मेरे पास भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ललित निबंध और व्यंग दो परस्पर विरोधी ध्रुव हैं।
1: जी,
2: एक में भाषा का तंज होता है, कसैलापन होता है, एक मीठी सी मार होती है, किसी को ऐंठना होता है, तोड़ना होता है, और दूसरी तरफ ललित मंद है जिसके साथ ललित लगा हुआ है, लालित्य है जिसमें, मिठास है जिसमें।
1: जी,
2: तो इसकी भाषा बड़ी मृदु होती है, बड़ी कोमल होती है, ये हृदय स्पर्शी होता है, हृदय पक्ष को लेके चलता है।
1: जी,
2: व्यंग मस्तिष्क पक्ष को लेके चलता है। तो ये दोनों विधाएं परस्पर विरोधी हैं, और मुझे भी लगता है कि अपने साहित्यिक यात्रा में, हो सकता है कि मेरी जानकारी कम हो, मैं किसी ऐसे साहित्यकार को नहीं जानता जिसने व्यंग और ललित निबंध दोनों एक साथ लिखा हो।
1: जी बिल्कुल।
2: लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं ये खुद नहीं जान पाता हूं कि मैं व्यंग से ललित निबंध में कब ट्रांसफर कर जाता हूं, ये कायांतरण कब होता है। इस पर मैंने सोचा, कुछ वस्तुएं मन को पीड़ा पहुंचाती हैं, जो विसंगतियां होती हैं उस पर व्यंग बनता है, और कुछ चीजें दिल को छू जाती हैं, बड़ा विस्तार मांगती हैं, बड़ी मिठास होती है
1: जी।
2: हमारी यादों से जुड़ी होती हैं। थोड़ा सा मैं नॉस्टैल्जिक हूं, मुझे अपना बचपन और गांव गिराव बहुत याद आता है, वहां की मिट्टी मेरे साथ अभी भी चली आ रही है
1: जी।
2: तो परंपराएं जो पहले हुआ करती थी, मैं परंपराओं की बात कर रहा हूं, रूढ़ियों की बात नहीं कर रहा हूं।
1: जी बिल्कुल।
2: जो अच्छी परंपराएं थी उनकी बात मैं कर रहा हूं। तो ललित निबंध में बड़ी मिठास होती है, जो पक्ष हृदय स्पर्शी लगता है, मुझे लगता है मैं उस पर ललित निबंध लिखता हूं, और वहां पर मेरी भाषा, मुझे लगता है कि मेरे ऊपर संस्कृत का, अंग्रेजी का और हिंदी का प्रभाव तो है ही, मुझे लगता है कि वहां मुझे संस्कृत का प्रभाव ज्यादा पड़ जाता है, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें व्यंग नहीं लिखे गए हैं, उसमें सब कुछ मीठा मीठा अच्छा अच्छा ही लिखा गया है। इसे मैं एक तो संस्कृत साहित्य की देन मानता हूं, और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मेरा हृदय पक्ष प्रबल है। ये बड़ी विचित्र बात है कि मैं व्यंग लिखता हूं, लेकिन हृदय पक्ष मेरा प्रबल है, और उस हृदय पक्ष के वश में जब होता हूं मैं, तो मैं ललित निबंध लिखता हूं। और मैंने ललित निबंध लिखना बड़े देर से शुरू किया, बहुत देर से। उसकी बड़ी रोचक कहानी है
1: जी, वो जानना चाहेंगे हम कहानी। लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि व्यंग का तीखापन ललित निबंध की मिठास को
2: जी
1: कैसे प्रभावित कर लेता है।
2: जी जी, ये जो है मेरे दो ललित निबंध संग्रह आ चुके हैं। एक तो है कुल्हड़ की चाय, पहला, जो कि NBT से राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से छपा है
1: जी,
2: और दूसरा है नयन अरुबानी,

0: वो सर्वभाषा ट्रस्ट से प्रकाशित हुआ है। तो मेरे पाठक, मेरे कुछ आलोचक और साहित्यकार मित्र इस बात को रेखांकित करते हैं कि आपके ललित निबंधों में व्यंग मिल जाता है। ललित निबंध में व्यंग की आवाजाही है। यहाँ तक कि एनबीटी की जो मेरी कुल्हड़ की चाय आई है उसके संपादक ने भी इस बात को कहा था, शायद ही आपके किसी ललित निबंध में व्यंग मिलेंगे
1: जी।
0: लेकिन जो व्यंग मेरा मूल स्वभाव है वह थोड़ा सा रूप बदल करके ललित निबंध में आ जाता है। और लोग कहते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो क्या समझता हूं, मैं क्या कहूंगा, कि वह उसमें एक स्वाद में वृद्धि कर देता है और वो उसमें एक तरह से व्यंग का तड़का, जैसा उसको कहते हैं व्यंग का तड़का आपने दिया है, हालांकि मैं जानबूझ के नहीं देता हूं। मेरा मानना है कि जो लेखन अनायास होता है, बिना किसी परिश्रम के होता है, वही लेखन सफल होता है। अगर आप प्रयास करके लिखते हैं तो दुरू हो जाता है, तो अपने आप वह व्यंग उसमें आ जाता है और जहां भी संगतियां दिखती हैं, लेकिन उसकी भाषा जो होती है वो बड़े मीठे व्यंग की होती है। तो ये आवाजाही दोनों में चलती रहती है और कहीं कहीं मेरे व्यंग में भी मेरा ललित निबंध एक दो लाइन आ जाता है, वो आवाजाही हो जाती है
1: जी। तो व्यंग्य का तीखापन आ ही जाता है आपके ललित निबंधों में। तो ललित निबंध की कोई निश्चित सीमा या ढांचा होता है क्या?
0: एक तो हमारे यहाँ ललित निबंध लिखने वाले कुछ ही लोग हुए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और विद्यानिवास मिश्र जी, बाद में कुबेरनाथ राय जी, विवेकी राय, श्याम सुंदर दुबे, और भी कई लोग लिख रहे हैं व्यंग, अभी भी लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं। लेकिन अगर जैसे व्यंग में हम भीष पितामह परसाई जी को मानते हैं, उसी तरह से अगर ललित निबंध की बात करें उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र जी हैं। विद्यानिवास मिश्र जी बहुत बड़े ज्ञानी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के भी ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, मैं तो उनके सामने बहुत तुच्छ हूं, कुछ नहीं है, उतना अध्ययन उतना नहीं है मेरा। इनके निबंधों में अध्ययन बहुत ज्यादा होता था, लेकिन लोक से जुड़ा रहा है। जैसे आप विद्यानिवास मिश्र जी के मेरे

0: इसमें हृदय पक्ष भारी होता है, इसमें आप वैज्ञानिक तर्क नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक तर्क कड़वा होता है, वो साहित्य में नहीं, साहित्यिक सत्य और होते हैं, वैज्ञानिक सत्य और होते हैं। तो ललित निबंध की सीमा कोई नहीं है, उसकी सीमा इतनी है कि वह लोक को, परंपरा को, आपके अतीत को, अच्छी परंपराओं को जोड़ करके कुछ ज्ञान दे सके और आपको सहज प्रवाह में ले चले, आपके हृदय को जोड़ता चले, तो वही उसकी सीमा है।
1: राडी साहब, बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है, इस बीच एक गीत सुन लिया जाए।
0: जी जरूर, उमराव जान फिल्म का एक गाना है, गजल है, गजल मुझे बहुत पसंद है, आशा भोसले की, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजार।
1: क्या बात है, क्या बात।
0: जी जी जी,
1: आइए आपकी पसंद की ये गजल सुनते हैं।

0: हरिशंकर जी, यहाँ पर हम बात उस घुमक्कड़ी की भी कर लेते हैं
1: जी।
0: क्या घुमक्कड़ी का अनुभव निबंध में कल्पनाशीलता को बढ़ाता है?
1: जी हाँ, निश्चित रूप से। मैं तो मानता हूँ कि घुमक्कड़ी का असर साहित्य में ही नहीं, साहित्य, संगीत और किसी तरह की कला हो, और उसको छोड़िए व्यक्ति के निजी जीवन में बहुत रचनात्मक प्रभाव छोड़ता है। अगर आपने भ्रमण किया है, यात्रा कर रहे हैं और यात्रा को यात्रा की दृष्टि से कर रहे हैं, तो चाहे आप ललित निबंध लिखें, चाहे आप कहानी लिखें, चाहे आप व्यंग्य लिखें, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्रोत नजर आता है। आप किस यात्रा में कहां कौन सा बिंदु पकड़ लेंगे और वह बिंदु किस रचना के रूप में पल्वित हो जाए।

0: ये आप नहीं जानते हैं। बस आपके अंदर वो कल्पनाशीलता होनी चाहिए, वो चिंतनशीलता होनी चाहिए कि उसको आप एक उचित आकार दे पाएं, उसको उस संबंधित भाषा से जोड़ करके जनता से जोड़ पाएं, पाठक से जोड़ पाएं। तो यायावरी का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। मेरा एक ललित निबंध है कालिदास की उज्जैनी। मैं उज्जैन की यात्रा पर गया था, उज्जैन की कई बार यात्राएं मैं कर चुका हूं। तो उज्जैन की यात्रा में मैं एक बार वहां के एक मंदिर के दर्शन के लिए एक जंगल में पहुंच गया। तो जब वहां मैं पहुंचा तो वहां से देखा मैं कि उस जंगल में मुझे तुरंत कालिदास याद आ गए। कालिदास का एक खंड काव्य है मेघदूत। कालिदास मेरे बड़े प्रिय कवि रहे। कालिदास का मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम मैं इसको अनपैरेलल मानता हूं, इसके बराबर कोई नहीं। तो कालिदास उसमें मेघ को उज्जैनी के रास्ते भेजते हैं यक्षिणी के पास। तो जिस प्रकार के वनों का वर्णन वो करते हैं मुझे उस जगह पर दिखने लगा और उसी को लेकर के मैंने अपना ललित निबंध लिखा कालिदास की उज्जैनी। वो मेरे ललित निबंध संग्रह में है। तो मैं तो पूरा का पूरा श्रेय उस घुमकड़ी को ही देता हूँ, ना मैं वहां जाता ना वो मेरा ललित निबंध मिलता
1: जी,
0: और मेरे पाठकों ने मेरे आलोचकों ने उसकी प्रशंसा की कि वो कहां से यात्रा और कहां से पूरा कालिदास को लेकर चल पड़े। वो पूरा उसमें कालिदास आ जाते हैं, कालिदास की अक्षरी आ जाती है, कालिदास का उज्जैनी का वर्णन आ जाता है, उस वन में क्या क्या होता है, अभिसारिकाएं जाती हैं, कैसे जाती हैं, बादल से क्या कहते हैं। कालिदास का विलक्षण व्यक्ति, उनकी कल्पनाशीलता का कोई जवाब नहीं है और वो मुझे वहीं जाकर के मिला।
1: तो आपकी घुमक्कड़ी और आपकी जो अत्यधिक पठन पाठन की जो प्रवृत्ति है, गहन अध्ययन करने की प्रवृत्ति, एक लेखक को बहुत समृद्धशाली बना देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
0: जी, जी।
1: आपका ललित निबंध संग्रह जो नयन अरुबानी है उनकी उसकी समीक्षा में पढ़ रही थी
0: जी, जी।
1: और उसमें समीक्षक लिख रहे हैं कि ये संग्रह समकालीन हिंदी गद्य संवेदना और विवेक का दुर्लभ संतुलन है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में?
0: जी, ये तो आलोचक या समीक्षक की सदा सहायता है कि उन्होंने मेरे निबंध संग्रह के बारे में इतने अच्छे विचार रखे। नयन अरुबानी तुलसीदास के रामचरितमानस की एक अर्धाली है। गिरा अनयन नयन बिनु बाने, ये सीता स्वयंवर से पहले जनक वाटिका का प्रसंग है। राम और लक्ष्मण वाटिका में घूम रहे हैं, सीता की सखियां देखती हैं और वो सीता से आकर के कहती हैं कि श्याम गौर किमी कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बाने, कि उनकी सुंदरता का वर्णन मैं कैसे करूं क्योंकि आंखों के पास जुबान नहीं है, गिरा नहीं है और जबान के पास जीभ के पास नयन नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अचानक मुझे एक दिन लगा कि नहीं, नयनों की भाषा बड़ी तगड़ी होती है। मैं तुलसीदास का बड़ा सम्मान करता हूँ। वो भले करें कि गिरा अनयन नयन बिनबानी, उनके हिसाब से गिरा जो है और नयन एक दूसरे से कटे हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता कि नयन बिनबानी नहीं है, नयन और बानी है। और नयनों की भाषा के लिए शाब्दिक भाषा की आवश्यकता नहीं, वो सीमा से परे है। तो उस प्रसंग को लेकर के मैंने उसको लिखा, उसमें और भी चीजें आई हुई हैं। अच्छा, मैं बताता लूँ कि ललित निबंध में श्रृंगार का बड़ा महत्व होता है। हम कितने भी आपाधापी कुछ कर लें, लेकिन श्रृंगार या उसको आप सीधे सरल शब्दों में कहें तो प्रेम का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। जिसके जीवन में प्रेम है उसको किसी भी तरह की कमी दुखी नहीं कर सकती है
1: जी।
0: तो नयन प्रेम के प्रतीक हैं, ललित निबंध में प्रेम आना चाहिए, उस चीज को लेकर मैंने लिखा था गिरा अनयन नयन बिनु बानी। और उसमें इस तरह के बहुत सारे निबंध हैं जो हमारी परंपरा को, हमारे संवेदना को, हमारी दृष्टि को, हमारी जड़ों को जोड़ते हैं, सींचते हैं। तो उससे प्रभावित होकर के समीक्षक ने ऐसा लिखा होगा।
1: प्रभाव होना एक अलग है, लेकिन पढ़ने के बाद लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जो समीक्षक को अपील करती है, तब जाकर एक इतनी बड़ी बात कही जाती है
0: जी।
1: तो राडी साहब, अपनी पसंद का एक गीत और बताइए
0: जी। मेरे पसंदीदा गायकों में किशोर कुमार जी भी रहे हैं। बड़ी मस्त आवाज उनकी है, बड़ा मस्त गाते हैं। उनका एक गाना है अय्याराना फिल्म से, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा
1: जी।
0: यह गाना मुझे बहुत ही पसंद है, तो मैं इसे सुनना चाहूंगा।
1: आई सुनते हैं।

0: हरिशंकर जी, ये बताइए कि तेज रफ्तार और सोशल मीडिया के दौर में ललित निबंध लेखन के सामने क्या चुनौतियां आ गई होंगी या क्या चुनौतियां रही होंगी या हैं आज भी?
1: ललित निबंध के सामने मुझे एक चीज, एक चुनौती लग रही है कि इसको कई लेखक और कई आलोचक भी मानते हैं कि ये विलुप्त प्राय प्रजाति हो गई है, विलुप्त विधा हो गई है, इसके लिखने वाले कम हैं
0: जी,
1: बहुत कम लोग लिखते हैं। मेरा खुद ही कम से कम आप मान के चलिए कि 20 साल के लेखन के बाद मैं ललित निबंध में आया
0: जी।
1: तो ललित निबंध में लेखन कम हो रहा है, एक तो एक दौर ऐसा चल रहा है, ये संक्रमण का दौर है ये, जिसमें लोग प्रसिद्धि बहुत जल्दी पाना चाहते हैं और वो प्रसिद्धि तरह तरह के राजनीतिक विमर्श, गुटबाजी और इन सब में है। तो साहित्य की और विधाओं में चीजें चल रही हैं, ललित निबंध में किसी तरह की गुटबाजी का कोई चांस नहीं होता है क्योंकि यह हृदय पक्ष है। इसमें धैर्य की आवश्यकता पड़ती है और जो धैर्यवान व्यक्ति होगा, बहुत पढ़ेगा, वही ललित निबंध लिख पाएगा। जो कम पढ़ता है, कम सोचता है, जिसके दिमाग में प्रेम पक्ष नहीं घुस पाता है, वो शायद ललित निबंध नहीं लिख पाएगा। तो ललित निबंध के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इसके लेखक कम रह गए हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि पाठक इसका मुरीद आज भी है, पढ़ते हैं लोग।
0: अच्छा
1: जी, पढ़ते हैं लोग। मैं अपने बारे में नहीं कहता, मेरी कुल्हड़ की चाय
0: जी
1: का एक संस्करण खत्म हो गया और दूसरा संस्करण आ गया है, जबकि व्यंग दूसरे संस्करण कम आए हैं। तो कहीं ना कहीं पढ़ा तो जा रहा है ललित निबंध।
0: तो कुल्हड़ की चाय किस तरह से लिखी गई, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें, हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे।
1: जी, ये आप देखेंगे कि बहुत ही सामान्य विषय लिया गया है
0: जी,
1: शायद ऐसे विषयों पर, ऐसे शीर्षकों पर ललित निबंध नहीं लिखे गए हैं। सब इससे पहले जो मेरा पहला ललित निबंध था, क्या करते हो कालिदास, पहला निबंध मेरा वो था। इसको बताने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी है
0: जी।
1: एक दिन मैं, एक सब्जी होती कुंदरू,
0: कुंदरू की,
1: उसे मैं ले आया बाजार से और श्रीमती जी ने बनाया, मैं उसे खा रहा था। अचानक मेरे दिमाग में आया कि कुंदरू को संस्कृत में बिंब कहते हैं, और जब बिंब कहते हैं तो कालिदास मेरे प्रिय है। मैंने बताया आपको, कालिदास ने अपने मेघदूतम में एक छंद लिखा है, यक्षिणी का वर्णन करते हैं वो, बादल से कहते हैं कि तुम जाओगे और पर्वत पर मेरी प्रेयसी यक्षिणी मिलेगी। शंका उनको होती पहचाने का कैसे, तो उसका लक्षण बताते हैं। तो वो उसका लक्षण बताते हैं, उसके श्लोक की वो छंद की पहली लाइन है
0: जी,
1: तन्वी श्यामा शिखर दसना पक्व बिंबा धरोष्ठी
0: जी,
1: मध्य क्षामा चकित हरड़ी प्रेक्षणा निम्न नाभि। श्लोक लंबा है इसमें, तो पहले आता है पक्व बिंबा धरोष्ठी, पके हुए बिंब यानी कुंदरू के फल के समान
0: जी।
1: फिर वो सब्जी वहीं रह गई बनी हुई और मुझे वो पूरा कालिदास का मेघदूत दिखने लगा, उनकी पूरी यात्रा दिखने लगी। और मुझे हैरानी हुई कि जो लोग कालिदास के इस छंद को पढ़े होंगे, वो पहले कुंदरू को जानते हो ना जानते हो, लेकिन आप जान जाएंगे। तो मेरे मन में यही वहां पर एक विचार का उदा, और मैंने कहा क्या करते हो कालिदास। अंतिम लाइन उसकी है कि तुम्हें प्रसिद्ध तो करना था यक्षिणी को और तुमने प्रसिद्ध कर दिया कुंदरू को
0: जी।
1: तो ये जब मैंने लिखा और मैंने किसी को दिया, बड़े साहित्यकार को, तो वो बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद कोरोना काल में मैं कहीं कॉलोनी के बाहर जा रहा था, उस समय आना जाना बंद था, मैं चाय का बड़ा शौकीन हूँ, चाय पीता हूँ
0: जी।
1: तो कॉलोनी के बाहर एक कुम्हार की लड़की कुछ अपने मिट्टी के बर्तन बेचती थी, तो मेरा आना जाना बंद हो गया था, हर जगह सबका बंद हो गया था। तो वहां से मैं ले आया कुल्हड़, वो कुल्हड़ बेच रही थी, 3 कुल्हड़ लाया, कुल्हड़ की चाय बनवा के पिया। तो उस कुल्हड़ की चाय के पीने के साथ साथ मेरे कुल्हड़ को लेकर के बहुत सारे विचार पैदा हुए, और उसमें जो गंभीर बात या संदेशप्रद बात यह आई कि धीरे धीरे हम अपनी मिट्टी से दूर होते जा रहे हैं। इस ललित निबंध में आपको व्यंग मिलेगा, कई जगह मिलेगा कि देसी चीजें समाप्त होती जा रही हैं, हम थर्मोकोल और प्लास्टिक पर आते जा रहे हैं, पर्यावरण को कितना नुकसान कर रहे हैं, और अंततः क्या होता है कि वो कुल्हड़ की मिट्टी आती है ताल से, तालाब से चिकनी मिट्टी होती है, उस पर कब्जे हो रहे हैं, उसका पट्टा हो रहा है, और अब कुल्हड़ आपको कुम्हार का बनाया हुआ नहीं मिलता है। तो मैं उस पर व्यंग लिखा, उस व्यंग आया, लिखा नहीं व्यंग आया कि अब देसी और मिट्टी से जुड़ी चीजें खत्म हो रही हैं, उसको भी बड़ी कंपनियां बना रही हैं। अभी हम सौभाग्यशाली हैं कि अपने देश की मिट्टी का कुल्हड़ मिल जा रहा है, 10-20 साल बाद आजादित होगा, लोग पीकर फेंकेंगे, और सभ्यता के एक युग के बाद जब कभी जमीन की खुदाई होगी, तो जब ये मृत भांडे निकलेंगे तो उस समय के लोग कहेंगे कि उस समय के लोग मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे, कितने असभ्य थे। तो ये व्यंग जो है कितना मीठा व्यंग इसमें आया। यहां से फिर ये जो व्यंग मेरे अच्छे निकले, ललित मत अच्छे निकले, और फिर जो है वो देश की बड़ी पत्रिकाओं ने उसको प्रकाशित करना शुरू किया, अक्षरा, नवनीत, और वहां से फिर मैं ललित मत की लाइन में आ गया। और आज मुझे, मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे व्यंग ज्यादा प्रिय है या ललित मत।
0: जी, तो आपको अपनी सभी विधाएं पसंद हैं, क्योंकि एक लेखक जिस विधा में हस्तक्षेप रखता है, और फिर अक्षरा और नवनीत जैसी राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में अगर इस तरह के निबंध छपते हैं तो उसका पाठक वर्ग भी कितना विस्तृत होगा,
1: ये
0: हम समझ सकते हैं।
1: जी,
0: तो एक गीत हो जाए पहले।
1: जी हाँ बिल्कुल, मुझे एक गीत बहुत पसंद है मोहम्मद रफी साहब का, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे पगला
0: कभी भी। क्या बात
1: जी,
0: है फिल्म पगला कही का ये गीत हम सुनते हैं, और उसके बाद हम आगे की आपकी यात्रा पर बात
1: कर पाएंगे। जी, हाँ, मैं भी सुनना पसंद करूंगा। तुम

0: सबसे बड़ी बात कि एक लेखक जब लिखता है तो उसकी विधाओं को भी भुलाना आसान नहीं होता है, है ना हरिशंकर जी? आप भी जिस तरह से लेखन कर रहे हैं उसे जिसने भी पढ़ लिया है तो भूलना असंभव ही है। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण आप काम कर चुके हैं, हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर रामदर्श मिश्र
1: जी
0: को लेकर
1: जी
0: आपने बहुत बड़ा काम किया है। तो आपके और रामदर्श मिश्र जी के बीच जो साहित्यिक संवाद और वैचारिक आत्मीयता बढ़ी, ये कैसे शुरू हुई पहले हम ये जान लें, उसके बाद आपने उनके साथ क्या क्या कार्य किए हैं वो उसका जिक्र हम करेंगे।
1: जी जी जी मुंदागिरी जी, इसे मैं अपने जीवन का बड़ा सुखद पक्ष मानता हूँ।
0: जी एक महान पल होंगे मुझे तो लगता है आपके जीवन के।
1: जी जी बहुत बहुत सुखद पक्ष रहा है मेरा कि मैं आदरणीय रामदर्श मिश्र जी के सानिध्य में रहने का मुझे मौका मिला है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ कि उनका स्नेह मुझे बहुत मिला है। जैसा कि आपने पूछा तो मेरे अंदर का छात्र विद्यार्थी भी जिंदा है, मैं जब तक पढ़ ना लूँ मुझे चैन नहीं मिलता है। मेरी सबसे प्रिय हॉबी पढ़ना है तो पढ़ता रहता। रामदर्श मिश्र जी को मैंने बहुत पढ़ा था लेकिन व्यंगकार कहिए आप जो भी कहिए, होने के बावजूद मैं थोड़ा सा संकोची स्वभाव का हूँ। मुझे अपने आप को प्रस्तुत करने में या मिलजुल करके कुछ काम निकलवाने में बड़ा संकोच होता है, कभी ऐसा नहीं कर पाता मैं। तो सन 2002 में हमने एक पत्रिका निकालना शुरू किया था, समकालीन अभिव्यक्ति, त्रैमासिक पत्रिका। आज इस पत्रिका की थोड़ी पहचान बनी हुई है, निकल रही लगातार 2002 से। तो उस पत्रिका के लिए मैंने रामदर्श मिश्र जी को एक पत्र लिखा। मुझसे कई लोगों ने कहा था कि मिश्र जी से मिलिए आप, संकोच बस मैं नहीं गया। तो बहुत बड़े हस्ती थे, बहुत बड़े साहित्यकार, हम छोटे से तब नए तो संकोच होता था। तो उनको मैंने पत्र लिखा, तो पत्र लिखने के मेरे ख्याल से साधारण पत्रों का जमाना था वो। 10 दिन के अंदर मुझे उनकी रचना मिल गई, मैं बड़ा हैरान हुआ, एक अच्छी नई कहानी लिखी हुई
0: जी।
1: तो फिर मैंने उनको पत्र लिखा और धन्यवाद दिया। और हमारे पास उनका कोई, आज की तरह से इंटरनेट का जमाना था नहीं, नया फोटो और वो नहीं था, वो मांगा मैंने। तो उन्होंने लिखा कि राढ़ी जी वैसे परिचय की आवश्यकता तो नहीं है लेकिन आप कह रहे तो दे रहा हूं मैं। तो बड़े प्रभावित हुए कि एक नई सी पत्रिका जिसका कोई नाम इतना नहीं है उसके लिए इतना बड़ा साहित्यकार हमें ये तुरंत कहानी दे दे रहा है, राष्ट्रीय स्तर का साहित्यकार। फिर कुछ दिनों बाद मैं और मेरी पत्रिका के साथ में जो संपादक जी हैं उपेंद्र कुमार मिश्र जी, हमने प्रोग्राम बनाया कि चला जाओ, उनसे बात की तो बोले आप आ जाइए। और जब उनके यहाँ गए, मिश्र जी समय के बड़े पाबंद थे और समय का पाबंद मैं भी हूँ, वहाँ जब पहुँचे तो उस समय उनकी उम्र करीब करीब 87-88 साल थी।
0: अच्छा,
1: वो अभी 101 वर्ष पूरा करके
0: जी
1: गोलोकवासी हुए अभी 31 अक्टूबर को
0: जी।
1: जब हम गए तो अपने दरवाजे के गेट पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे हमारा
0: जी।
1: तो कहा दुनिया में कितने महान लोग होते हैं। और फिर ले गए, पहली ही मुलाकात में उन्होंने हमको इतना सहज बना दिया कि उनसे जुड़ते गए, उनकी बहुत सारी रचनाओं को पढ़ा, उन पर बहुत सारी मैंने समीक्षाएं लिखी और उन समीक्षाओं को बड़ा पसंद करते थे। 2-3 साल बाद में उनसे एक साक्षात्कार लिया अपनी पत्रिका के लिए,

0: और उस साक्षात्कार के बारे में उनका कहना था, उनका लिखित मेरे पास है, कि मेरे जीवन के साक्षात्कारों में ये सर्वाधिक प्रिय साक्षात्कार है।
1: क्या बात है।
0: और उसके बाद ऊपर तमाम विधाएं प्रकाशित हो चुकी थी, तमाम लोगों ने साक्षात्कार लिए थे। तो एक बार ऐसे बातचीत में, अब उनके पास मैं जब मन होता था फोन करता था, चला जाता था। तो उन्होंने कहा कि एक विचार है इसका, तो मैंने कहा मैं इसको करूँगा, तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। तो संवाद यात्रा नाम से उनके साक्षात्कारों का पहला संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसका संपादन मैंने किया
1: जी।
0: उसके बाद सन 2020 में कोरोना काल में हमने अपनी पत्रिका का उनके ऊपर एक विशेष अंक निकाला। और आपको मैं बता दूं मंदाकिनी जी, कि हमारी पत्रिका ने पिछले लगभग 24 साल में व्यक्ति केंद्रित केवल एक विशेष अंक निकाला है, रामदर्श मिश्र जी पर।
1: क्या बात है।
0: दूसरे पर हमने विशेषांक निकाला ही नहीं, और वो ऐसे महान व्यक्ति की जीवन में कभी उन्होंने एक बार हमसे संकेत भी नहीं किया कि हमारे ऊपर विशेषांक निकालिए। हमने उसको निकाला, कोरोना काल की दिक्कतें थी उनकी, उस समय उम्र हो गई थी और ज्यादा, करीब करीब मान लीजिए 95-96 के थे, तब तक उनको साहित्य अकादमी और कई सम्मान मिल चुके थे। तो सारी तैयारी हमने फोन पर की, क्योंकि उनके यहाँ जा नहीं सकते थे और उनकी अवस्था का और ध्यान देना था
1: जी।
0: तो विशेषांक निकला 120 पेज का। तमाम रचनाकारों से मैंने बड़े सख्ती से कह करके मांगा कि आपको नया लेख देना है तो दीजिए, हम पुराने लेख नहीं छापेंगे। और उस अंक के वो बड़े प्रशंसक रहे। कुल मिलाकर के मैंने जितना सहज व्यक्ति, जितना महान व्यक्ति रामदर्श मिश्र जी को देखा, उतना मैंने किसी और को नहीं देखा। उनसे जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला है
1: जी।
0: उनकी तो एक गजल है जो बहुत ही वायरल है आजकल, शायद आपने भी सुना होगा, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे।
1: जी जी जी।
0: तो वो गजल नहीं है, एक जीवन दर्शन है
1: जी। बिल्कुल,
0: आप कहें तो उसको मैं दो लाइनें उसकी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए।
0: वो उनकी जो गजल है, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर ये उनका शेर सबसे मशहूर है, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर वहां मैं भी पहुंचा मगर धीरे
1: धीरे,
0: पहाड़ों की कोई चुनौती नहीं थी, उठाता गया यूं ही सर धीरे धीरे, गिरा तो बहुत मैं अकेले में रोया, गया दर्द से घाव भर धीरे धीरे। और आखिर एक लाइन देखिए, किसी को गिराया न खुद को उछाला, किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे।
1: कितना बड़ा जीवन दर्शन उन्होंने अपना बता दिया है
0: जी,
1: कि लोग कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ
0: जी। 100 से अधिक पुस्तकें लिखने वाले, नाटक छोड़कर के हर विधा में लिखने वाले, कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता था उसको अपना बना लेते थे, कभी आभास होने ही नहीं दिया कि वो इतने बड़े हैं। और तब जाकर समझ में आया कि बड़प्पन इसको कहते हैं
1: जी।
0: साहित्य ये होता है, साहित्य लोग लिखते हैं और रामदर्श मिश्र जी ने साहित्य जिया है।
1: बिल्कुल। तो रैडी साहब, आपकी बातों से लग रहा है कि आप भी गाने सुनने के काफी मुरीद हैं ना, शौक रखते हैं
0: जी, जी।
1: कोई गीत बताएं, कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
0: बैजू बावरा फिल्म का एक गीत है।

0: प्रोफेसर राम दर्श मिश्र का लेखन समझ लेना या देख मात्र भर लेना, 70 साल उनका साहित्यिक सफर रहा।
1: जी जी हाँ, ज्यादा ही रहा।
0: और उनको कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की परंपरा का भी एक सशक्त संवाहक माना जाता रहा है और प्रेमचंद परंपरा के उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाते रहे हैं।
1: जी, असल में मिश्र जी के साथ एक प्रश्न उठाया जाता है और हमने भी अपनी पत्रिका में जब विशेषांक निकाला था उन पर, तो प्रश्न हमने उठाया था कि आप एक परिचर्चा करवाई थी हमने कि आप मिश्र जी को बड़ा गद्यकार मानते हैं या कवि मानते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। हालांकि मिश्र जी को जितने भी सम्मान मिले हैं बहुत ज्यादा उम्र बीत जाने के बाद मिले, लेकिन वो सब कविताओं पर मिले। चाहे वो उनको साहित्य अकादमी मिला आग की हंसी पर, आम के पत्ते पर उनको व्यास सम्मान मिला, मैं तो यहाँ हूँ ऐसे कई पर उनको अभी सरस्वती सम्मान मिला, पद्मश्री मिला जीवन के अंतिम वर्ष में
0: जी।
1: लेकिन उनका गद्य बहुत ही रोचक होता है और मंदाकिनी जी, मेरा मानना है कि कवि का गद्य बहुत अच्छा होता है, इसीलिए संस्कृत में कहा गया है कि गद्य कवि नाम निक्षम वदंती। संस्कृत में हर लेखक को कवि माना जाता है और गद्य ही कवि की कसौटी होता है। तो मिश्र जी की कहानियां, चाहे वह विषय की बात हो, विमर्श की बात हो, चाहे भाषा की बात हो, एकदम सहज होकर के चलती हैं। उनमें गांव का पूरा स्पर्श है। वो शहर में रह गए लेकिन उनकी मिट्टी कभी छूटी नहीं। अच्छा, दूसरी बात उनकी कहानियों में यह है कि वो अपनी कहानियों में कभी नारेबाजी नहीं करते, लाउड नहीं होते हैं। उनकी जितनी भी कहानियां हैं वो चाहे दलित विमर्श की हों, चाहे नारी विमर्श की हों, या समाज की किसी और समस्या की हों, ज्यादातर गांव पर आधारित हैं, शहरों के भी हैं, और वो गांव का जो चित्र खींचते हैं वो प्रेमचंद ही खींचते रहे हैं
0: जी।
1: और उनका एक उपन्यास है पानी के प्राचीर, संजोग से इसको प्रकाशित होने में थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन उसको आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि अपने जमाने की उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, ये लेखन नहीं है, ये चित्र है।
0: बिल्कुल,
1: ये बात बिल्कुल सही आपने कहा कि वो प्रेमचंद की परंपरा के हैं और प्रेमचंद की परंपरा उनमें जीवित रही है।
0: जी बिल्कुल, प्रोफेसर रामदर्श मिश्र जी जैसे महान साहित्यकार से आपने जो ये संवाद यात्रा शुरू की, एक लंबा स्वर्णिम सफर उनका जो साहित्यिक जीवन का पूरा हुआ, आपने एक अंक निकाला
1: जी।
0: तो इसके उद्देश्य क्या रहे होंगे, क्या आपकी जिंदगी में ये विचार क्यों आया होगा, संवाद यात्रा का अनुभव क्या रहा होगा?
1: रामदर्श मिश्र जी बहुत बड़े वट वृक्ष थे। उनका ना होना हमें बहुत खलता है, खैर यह प्रकृति का नियम है, उनकी स्मृति को सादर नमन है। मिश्र जी ऐसे व्यक्ति थे कि मैं ही नहीं, कोई भी व्यक्ति उनके पास खींचा चला जाता था। और मिश्र जी में यह भी खासियत थी कि सम्मान तो सबका करते थे, लेकिन कभी अपना कोई काम निकालने के लिए किसी की, क्या कहें, हमारी व्यंकारिक भाषा में चमचागिरी कहते हैं, यह शब्द रामदर्श मिश्र जी के प्रसंग में कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कभी उन्होंने कोई कवि से इच्छा नहीं रखी, महत्वाकांक्षा उन्होंने नहीं पाली, और साहित्य उनका उच्च स्तरीय, तो ये हमारे मन में ही पैदा हुआ कि मिश्र जी के ऊपर एक विशेषांक निकाला जाए। और उसके बाद जब उनसे मैंने इंटरव्यू लिया था तब उनकी बातों से बड़ा प्रभावित हुआ था, तो मेरा उद्देश्य ये था उसमें कि मिश्र जी के जीवन के, साहित्य के जो पहलू हैं वो पाठकों के सामने ईमानदारी से रखे जाएं
0: जी,
1: कुछ नई चीज दी जाए, उन पर समीक्षाएं, उन पर संस्मरण, यहाँ तक कि हमने उनके परिवार के लोगों से उन पर लेख लिखवाए। उनकी पत्नी सरस्वती जी दिवंगत हो गई सन 2023 में, उन्हें माता जी कहते, तो वाकई वो माता की ही अवतार थी। इतने लोगों का आना जाना उनके यहाँ था, कोई भी व्यक्ति बिना उनके यहाँ से जलपान किए, खाना पीना खाए नहीं आता था। उन्होंने मिश्र जी पर संस्मरण लिखा।
0: अच्छा।
1: उनकी पुत्र वधु ने लिखा। उनकी बेटी स्मिता जी हैं, वो उनकी विरासत को संभाल रहे हैं। इन लोगों ने बहुत सामग्री उपलब्ध करवाई, ये चीज भी देखना जरूरी था। और जिन लोगों ने रामदर्श मिश्र पर नहीं लिखा था उनका दृष्टिकोण हमें देखना था, उनसे मैंने कहा कि लिखवाया। तो ये कुल मिलाकर के संवाद यात्रा और समकालीन व्यक्ति का अंक रामदर्श मिश्र जी के जीवन पर, उनके व्यक्तित्व पर, कृतित्व पर, उनकी महानता पर और उनकी अघोषित महानता में, शब्द आपके पास प्रयोग कर रहा हूँ, छोटा छोटा लोग लिख करके बड़े महान अपने आप को मान लेते हैं और वो इतने महान होकर के अपने आप को कुछ नहीं समझते थे, इस बात से प्रभावित हुए हम, इस चीज को दिखाने के लिए हमने इन अंकों पर इतनी मेहनत की और वो निकला।
0: और अब एक आपकी पसंद का गीत हम सुन लेते
1: जी,
0: हैं
1: जी, हाँ, जी,
0: उसके बाद
1: जी,
0: आपकी अगली विधा पर हम बात करने वाले हैं
1: जी। मंदाकिनी, मुझे गजलें बहुत अच्छी लगती हैं
0: जी,
1: और जगदीश सिंह की एक गजल है प्रेम गीत फिल्म से, होठों से छू लो तुम मेरे गीत अमर कर दो, ये मुझे बहुत पसंद
0: है। बहुत सुंदर
1: जी, इसे सुनना चाहूंगा मैं।
0: आई सुन जी।

0: दूं। राइडी साहब, आज के दौर में जब डिजिटल माध्यमों से संवाद इतना आसान हो गया है, तो प्रत्यक्ष रूप से यात्रा करके संवाद करने की जो प्रासंगिकता है वो आपको कैसी लगी, मतलब क्या महसूस हुआ आपको?
1: जी, ये बात आप ठीक से जान रही हैं। जो डिजिटल क्रिएशंस होते हैं वो आंखों को लुभाते हैं। कहा भी जाता है कि जो दृश्य चीजें होती हैं, विजुअल्स होते हैं, वो ज्यादा असर डालते हैं। साहित्य में भी इसीलिए सबसे पहले नाटक की कल्पना की गई थी। लेकिन जो डिजिटल माध्यम है, मुझे लगता है कि अस्थाई नहीं है। पुस्तकें अस्थाई हैं। कोई कितनी भी निराशावादी बात कर ले, लेकिन मैं इस बात का पूरी तरह से पुरजोर समर्थन करता हूं और पक्षधर हूं कि पुस्तकों का युग कभी अंत नहीं होगा। पुस्तकें थी, पुस्तकें हैं और पुस्तकें रहेंगी। पुस्तकें मनुष्य के ज्ञान की पहली कृति हैं, पहले प्रमाण हैं। ये हमेशा रहेंगी। तो डिजिटल चीजें हैं, लेकिन जब हम उनसे बात करके, संवाद करके उनको पुस्तक के रूप में, पुस्तकाकार रूप में रखते हैं, तो एक अस्थायी चीज है। पढ़ने की आदत समाज में फैलेगी, रहेगी, कम हो रही है माना जा सकता है, लेकिन एक न एक दिन और आएगा कि जब ये पुस्तकें अपना महत्व आज की तुलना में ज्यादा साबित करेंगी। ये हमेशा रहेंगी। उनको अक्षुण रखना, हमारी भावी पीढ़ी के लिए बचा के रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते।
0: जी बिल्कुल कहा, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा धन है ये।
1: जी
0: बिल्कुल सही कहा। और आपने प्रोफेसर रामदर्श मिश्र जी की नारी प्रधान कहानियों पर भी एक अंक निकाला है और लाल हथेलियां किताब के नाम के माध्यम से, इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइए कि किस तरह की कहानियां इस अंक में आपने एकत्रित की हैं।
1: जी, असल में इस तरह के मिश्र जी के संग्रह और लगभग सभी साहित्यकारों के साथ आते हैं जिनका लेखन प्रचुर होता है, ये लेखन की या उम्र की उत्तरावस्था में आते हैं कि अब उनको कैटेगराइज किया जाए, श्रेणीबद्ध किया जाए। पहले तो कहानी संग्रह आते गए। मिश्र जी की कहानियां नारियों पर और दलितों पर, वैसे बहुत सारा उन्होंने विषय, उनका बड़ा व्यापक रहा है
0: जी।
1: इन दो तरह के विषयों का हमारे समाज को आवश्यकता थी, खास करके आजादी के बाद यह माना जाने लगा था और सच था कि जब तक समाज में स्त्री और दलित शोषित आगे नहीं आएंगे, हम विकास नहीं कर सकते। और ऐसा समाज, ऐसी सभ्यता जिसमें स्त्री पीछे हो, समाज का एक वर्ग पीछे हो, उसे हम विकसित सभ्यता कह ही नहीं सकते, उस संस्कृति की प्रशंसा हम कर ही नहीं सकते। तो जितने भी लेखक थे, उनका यह दायित्व था कि स्त्री विमर्श की कहानियां लिखें, स्त्री को आगे ले आएं, उनके प्रति हो रहे अत्याचारों को दिखाएं। यह दौर चला, नई कहानी का दौर चला। मिश्र जी बिना किसी गुट से जुड़े हुए स्त्री विमर्श के लिए संघर्ष करते रहे, स्त्री के पक्ष में लड़ते रहे। उनकी कहानियों में जो एक भिन्नता पाई जाती है, खास करके स्त्री विमर्श की कहानियों में, वो यह है कि उनकी स्त्रियां वाकई नायिकाएं हैं, वो योद्धा हैं, और वो इस तरह की योद्धा हैं जो सकारात्मक युद्ध लड़ती हैं, जो गाली गलौज ना करके अपना रास्ता खुद बनाती है। जैसे उनकी कहानी है जिसमें एक उसकी पात्र भवानी, उसका पति मर जाता है, वो बड़े सवर्ण समाज से आती है और उस समय सवर्ण समाज स्त्रियों को बाहर आने की अनुमति नहीं देता है, उसकी खेती बाड़ी सब देखना है, तो वो खुद आती है, अपना खेती करती है, अपना हल चलाती है और उसकी बड़ी निंदा होती है, लेकिन वो भवानी निंदा से पीछे नहीं हटती है, लेखक उसको जाके समर्थन देता है। इससे एक बड़ा संदेश जाता है। क्या संदेश जाता है कि जो नायिका, जो स्त्री पढ़ेगी इसको, वो भी उस जैसा संघर्ष करना चाहेगी। और दूसरी बात देखिए कि वह उस कहानी की नायिका से खेतों में काम करवाते हैं, जिसका अर्थ होता है कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो उनकी नायिकाएं आप देखेंगे, उनकी जो पात्र हैं, वो खेती के काम से लेकर के और बड़े समाज के काम, मतलब जो आज की आधुनिक नौकरियां हैं, उसको भी अपने लेवल पे करती हैं, वो पुरुषों के मोहताज नहीं हैं। इस चीज को उन्होंने ऐसे परोक्ष रूप से दिखाया है कि स्त्री प्रेरणा लेती है और पुरुष कहीं न कहीं उसको स्वीकृति देता है और इस तरह से वो सकारात्मक युद्ध चलता रहता है। आज जो स्त्री इतनी आगे है, उसमें साहित्यकारों का योगदान है और ऐसे साहित्यकारों का तो मैं बड़ा योगदान मानता हूँ।
0: जी बहुत सुंदर।
1: तो ऐसी तमाम कहानियां उनकी हैं। उन कहानियों को लेकर के उनका एक विचार था, कैसा क्या क्या किया जाए। मैंने खुद अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया क्योंकि मैं भी स्त्री समर्थक हूँ।
0: जी,
1: मैं मानता हूं कि जब तक मातृशक्ति, मातृसत्ता हमारे बराबर नहीं होगी, हमारे ऊपर नहीं होगी, प्रकृति ने तो ऐसे ऊपर बना के भेजा उसे, हमने उसे डोमिनेट कर दिया, तो उसको उसकी जगह चाहिए। तो मेरा भी इसमें इंक्लिनेशन था, क्योंकि आपको बताया कि मैंने भी ऐसी कहानियां लिखी हैं। तो इस प्रस्ताव पर बड़े प्रसन्न हुए और फिर उनके तमाम संग्रह मैंने पढ़े हुए थे, उसमें से चयन किया मैंने अच्छी कहानियों का और उसका मैंने संपादन किया और वो कहानियां आज लाल हथेलियों के नाम से वो
0: बहुत सुंदर संकलन है। इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। और बस चलते चलाते आखिरी सवाल यही कि आगे क्या योजनाएं हैं आपकी?
1: जी उन्दाके जी, मेरा लिखना तो निरंतर चलता रहता है और सायास नहीं चलता है, मतलब जब

0: मेरे मन में कोई भाव ज्यादा प्रबल होता है तब मैं लिखता हूँ
1: जी।
0: मुझे नहीं याद आता कि मैंने कभी जबरदस्ती बैठ के कुछ लिखा हो, किसी संपादक ने कोई समीक्षा या कोई और मांग दिया उसकी बात अलग हो सकती है। लेखन निरंतर चल रहा है और मैंने जितना लिखा है मुझे लगता है उसका मैंने आधा भी प्रकाशित नहीं करवाया है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि मैं जल्दबाजी में नहीं रहता हूँ, मेरा काम आराम आराम से होता है, धैर्य से रहता हूँ मैं। और अभी तो मेरे पास कम से कम 4-5 व्यंग संग्रह आ जाएंगे जिनका मैटर मेरे पास पड़ा है, ललित निबंध है और गजलें हैं, गीत कविताएं भी मैंने कुछ लिखा हुआ है, गजलों का भी संग्रह आने वाला है। लेखन मेरा निरंतर चल रहा है और इस समय मैं खास करके व्यंग और ललित निबंध ही लिख रहा हूँ। बाकी गीत गजल हैं, ऐसी चीजें हैं जब भावुकता कभी आई तो वो तो कम समय में बन जाते हैं। लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य या कहें मेरी मुख्य प्रवृत्ति समय व्यंग और ललित निबंध पर ही है, उसी का लेखन मैं ज्यादा कर रहा हूँ। मेरे कई मित्र भी कहते हैं कि जब से आप गद्य में आए हैं तब से आपका पद्य बहुत पीछे रह गया है। मैंने कहा मैं किसी को खींचूंगा नहीं, जो मेरे साथ चलना चाहे चले, जो छूट जाएगा पीछे उसे मैं छोड़ दूंगा। मुझे आगे आगे चलना है, आगे देखना है, जो मिलेगा, जो मिल गया वो मेरा हो गया, जो नहीं मिला वो कोई बात नहीं है, आएगा फिर उसे साथ कर लेंगे। तो योजना यही है कि पढ़ता रहूं, लिखता रहूं और जब जब समय आए प्रकाशित होता रहूं, क्योंकि जनता के सामने, पाठक के सामने ये चीजें आए तो सोचता ये हूं कि अगर कुछ सकारात्मक दे गया, क्योंकि अब तो मैं भी वरिष्ठ नागरिक हो गया हूँ तो कुछ दे गया तो शायद वही जीवन की सार्थकता होगी।
1: तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और अनवरत लिखते रहें। चलते चलाते एक गीत आपका पसंद का और सुनना चाहेंगे हम।
0: हाँ, पहले मैं आपको अपनी पसंद का एक और गीत आपसे कह दूं। मेरे प्रिय गायकों में मुकेश भी रहे हैं, बहुत सुनता रहा हूं मैं। उनका एक गीत है, ओहरे ताल मिले नदी के जल
1: क्या
0: से,
1: बात है,
0: नदी मिले सागर से। ये अनोखी रात फिल्म का गीत है, तो कृपया इसको सुनाएं।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: ओर से ढेरों ढेरों धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने अपना अमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला। आप दिल्ली से यहाँ मुंबई आए, हम लोगों से मिले और हमारे से एक सार्थक बातचीत आपने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मंदाकिनी जी, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे अपने पाठकों से, आम जनता से रूबरू होने का एक मौका मिला, अपने विचार व्यक्त करने का आपने अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, आज के मेहमान कार्यक्रम में हमारे साथ थे वरिष्ठ कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक, अनुवादक, संपादक हरिशंकर राढ़ी साहब। और अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे प्रसिद्ध लेखक हरिशंकर राढ़ी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। रूठना एक शब्द नहीं है, रूठना एक सजा है। जब जिंदगी रूठ जाती है तो सजा बन जाती है जिंदगी। रूठी हुई जिंदगी को मनाना बहुत मुश्किल होता है। जिंदगी हरी भरी होती है, फूलों सरीखी मुस्कुराती है जिंदगी, लेकिन एक आंधी आती है और सारे फूल मुरझा जाते हैं। जिंदगी रूठ जाती है। प्यार दो लोग करते हैं, बेवफा दोनों नहीं होते हैं। फिर क्या होता है जो जिंदगी रूठ जाती है।

की भीड़ में कभी कभी सारे चेहरे अजनबी हो जाते हैं। ऐसे में सीधी सादी सड़क टेढ़ी हो जाती है, रास्ते नजर नहीं आते, चेहरे पर घिर आए उदासी परेशान करती है। जिंदगी को मुट्ठी में बंद कर उससे बतियाना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी रेत की मानिंद सरकती जाती है। ऐसे में हम जिंदगी को बुलाते हैं, मनहार करते हैं।

रूठी हुई जिंदगी जब मान जाती है तो लम्हे मोती से चमक उठते हैं, दिल खिल जाता है, आंखों में प्यार बेशुमार होता है, खुशियों का खजाना बन जाती है जिंदगी जब जिंदगी खुश होती है।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। मोहब्बत की इनायत सबको नहीं मिलती, जिन्हें मिलती है मोहब्बत उनकी जिंदगी फूलों की झालर जैसी हो जाती है। जिंदगी का सफर आसान हो जाता है जब मिल जाता है किसी का भला सा साथ। नदी में तैरती कश्ती पर दो चाहने वाले एक साथ अपनी जिंदगी का सफर तय करते हैं। वे कांटों की परवाह नहीं करते, खुशनसीब होते हैं वे जिनकी जिंदगी मोहब्बत से भरी होती है।

0: कभी कभी
1: कुछ लम्हे कभी बूढ़े नहीं होते, उन लम्हों पर अतीत की गर्द नहीं होती, न ही वो धूमिल होते हैं। वो लम्हे ताजी धुली आंखों की तरह चकमक रहते हैं, वो लम्हे बारिश में धुली पत्तियों की तरह हरे रहते हैं। कौन से लम्हे हैं वो जिन्हें हम अपनी पलकों की कोरों में सहेज लेते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम तराने नए पुराने के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: तराने नए पुराने।
1: सभी विविध भारती सुनने वालों को पूजा नारायणिया का प्यार भरा नमस्कार। गुड इवनिंग श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम तराने नए पुराने में। और पहला गीत ये रहा अलका याग्निक हंसराज हंस की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल हैं नुसरत फतेह अली खान का संगीत, कच्चे धागे फिल्म का नाम।

0: ये गीत अभी आपने सुना अलका याग्निक और हंसराज हंस की आवाजों में। संगीत था नुसरत फतेह अली खान का। अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मर्यादा का गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल हैं कल्याण जी आनंद जी का संगीत।
1: ए,
2: अरे
1: चुपके से दिल दे दे
2: नहीं ते
1: नहीं ते

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
3: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
2: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
4: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
5: तराने नए पुराने।
0: श्रोताओं, विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म ताल का ये गीत। इस गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और एआर रहमान ने धुन बनाई है। अनुराधा श्रीराम, एआर रहमान, सुजाता और सोनू निगम की आवाजें हैं।

अंतराल के बाद आप सभी साथियों का एक बार फिर से कार्यक्रम जयमाला में बहुत स्वागत है। सोनी महिवाल इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और शब्बीर कुमार की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, धुन बनाई है अनु मलिक ने।

थोड़ी सी बेवफाई इस फिल्म का गीत। अब सुनिए आशा भोसले की आवाज में गुलजार के बोल हैं खय्याम का संगीत।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला और अब कार्यक्रम का ये आखिरी गीत रेफ्यूजी फिल्म से हम आपको सुनवा रहे हैं। सोनू निगम और अलका याग्निक के स्वर हैं, जावेद अख्तर की रचना, अनु मलिक का संगीत, फिल्म का नाम रेफ्यूजी।

ये गीत बना इस कार्यक्रम का आखिरी गीत। इसी गीत के साथ फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला अब यहीं संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए साथियों, जय हिंद, और आप सुनते रहिए विविध भारती के कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है इंद्रधनुष के अंतर्गत कार्यक्रम राग अनुराग। इस कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अनपढ़ फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। ये गीत आधारित है राग यमन पर। राजा मेहंदी अली खां ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है मदन मोहन ने।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राग अनुराग। अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग तिलक कामोद पर आधारित। फिल्म अनुराधा से इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, शैलेंद्र के बोल हैं, संगीतकार रवि शंकर।

अगला गीत अलबेला फिल्म से। इस गीत को भी गाया है लता मंगेशकर ने, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, संगीतकार सी रामचंद्र, राग पीलू पर आधारित ये गीत।

संजोग फिल्म का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। गीतकार राजेंद्र कृष्ण है और संगीतकार मदन मोहन। राग काफी पर आधारित ये गीत है।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: इस संदेश से पहले संजोग फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, जो कि राग काफी पर आधारित था। और इसी गीत के साथ इंद्रधनुष के अंतर्गत कार्यक्रम राग अनुराग अब यहीं संपन्न होता है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रम्बनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने यह विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत हो जाएंगे।
4: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स, अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
3: प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा दर्ज की गई, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और ओडिशा की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि जुलाई में वर्षा और तेज होगी, जिससे खरीफ की बुआई में तेजी आएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफओ खातों में वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज को जमा करने का काम पूरा कर लेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जमा की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि नियामक प्रोत्साहनों के माध्यम से गिफ्ट सिटी एक वैश्विक विमान लीजिंग और वित्त पोषण केंद्र के रूप में उभर रही है। श्री नायडू ने कहा कि 2026 के बजट में अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र इकाइयों के लिए कर छूट की अवधि बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में आज शाम एक इमारत ढह गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार मलबे में 4 से 5 लोगों के फंसे होने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीमें भी राहत और बचाव के काम में लगी हुई हैं। तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi arrived in Melbourne, Australia this evening on the second leg of his three-nation visit. He was warmly received by Australian Minister for Housing, Minister for Homelessness and Minister for Cities Claire O'Neill upon his arrival. The Prime Minister said this visit will add vigour to the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. In a social media post, Mr. Modi said that he looked forward to the talks with his Australian counterpart Anthony Albanese. The Prime Minister said that he will also have the opportunity to interact with the Indian diaspora, which is an important pillar of India-Australia partnership. During his visit, Mr. Modi will participate in the 3rd India-Australia Annual Summit. He will also participate in the India-Australia CEOs Forum, where he will address a gathering of top business leaders from both the countries. Earlier in the day, Prime Minister Modi visited the UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta along with Indonesian President Prabowo Subianto. The two leaders toured the 9th century temple complex with Prime Minister Modi offering prayers at the main Shiva temple. In a joint press statement at the temple premises, President Prabowo thanked India for its support towards the conservation and restoration of the temple complex. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi described the visit as a deeply spiritual and memorable experience.
4: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
5: India and Russia today reaffirmed their commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora including at the UN, BRICS, EAG and SCO. The Ministry of External Affairs said that the 14th meeting of India-Russia Joint Working Group on Counter-Terrorism was held in New Delhi. Both sides condemned terrorism in all its forms and manifestation, including cross-border terrorism, and called for concerted action against terrorists and terrorist groups and their proxies and affiliates. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today said that several parts of the country have received good rainfall in recent days, reducing the number of rainfall deficient districts from 262 to 178. The minister said this while chairing a high-level review meeting in New Delhi over the possible impact of El Nino. Mr. Chauhan expressed confidence that rainfall will gain further momentum during July, leading to an acceleration in Kharif sowing. A building collapsed in the Sector 16 of Rohini in Delhi this evening. According to the Delhi Fire Service, 4 to 5 people are feared trapped under the debris and rescue operations are underway at the site. The Enforcement Directorate, ED, has frozen 440 crore rupees deposited in the bank accounts of All India Trinamool Congress, AITC. The case is related to dishonest financial dealings and routing of suspected funds. The ED has conducted search operations at 5 premises in Kolkata yesterday under the provisions of Prevention of Money Laundering Act 2002. The searches are being carried out at premises linked to a private firm operating in the aviation sector. The Defence Research and Development Organisation, DRDO, today conducted a successful flight test of Pinnacle Long Range Guided Rocket, LRGR, at the Integrated Test Range, Chandipur in Odisha. The Defence Ministry said that the rocket was tested for a user-defined minimum range of 60 kilometres. US President Donald Trump has said the memorandum of understanding signed with Iran to end the conflict is over, adding that he did not want to engage with Tehran. Trump's statement came during

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोस्त्यूक ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले जारी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल की टीमों की सूची तय। पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस और मोरक्को होंगे आमने सामने। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 क्रिकेट मुकाबला कल ब्रिस्टल में खेला जाएगा। तीसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन के बड़े अंतर से हराया और सातवां अल्टीमेट टेबल टेनिस टूर्नामेंट कल से गोवा में खेला जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं विंबलडन से, जहां पुरुष क्वार्टर फाइनल का मुकाबला खेला जा रहा है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोस्त्यूक ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मार्टिन्स को 6-3, 7-5 से और मार्ता कोस्त्यूक ने जैस्मिन पाउलिनी को 6-3, 6-2 से हराया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिज का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लोविया कोबली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। वहीं प्रतियोगिता में यानिक सिनर, नोवाक जोकोविच और कोको गॉफ ने पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सुनते हैं इन मुकाबलों पर एक रिपोर्ट।
1: नोवाक जोकोविच ने विंबलडन में 5 घंटे और 15 मिनट तक चले अब तक के सबसे लंबे क्वार्टर फाइनल में जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया है। वह विंबलडन में लगातार 8वीं और अपने करियर में 55वीं बार ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। जोकोविच ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फेलिक्स ऑगर अलियासिमी को 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 से हराया। क्वार्टर फाइनल में 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन ने ऑगर अलियासिमी के बैकहैंड को लगातार निशाना बनाया और अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़े। हालांकि कनाडा के खिलाड़ी अलियासिमी ने उन्हें कड़ी चुनौती दी और मैच को 5वें सेट के टाई ब्रेकर तक पहुंचाया। आखिर में जोकोविच अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए मैच अपने नाम करने में सफल रहे। इस जीत के साथ जोकोविच ने विंबलडन में शीर्ष 10 खिलाड़ियों के खिलाफ लगातार 3 हार का सिलसिला भी खत्म किया। अब सेमीफाइनल में जोकोविच का सामना इटली के यानिक सिनर से होगा। मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर ने जॉन लेनार्ड स्ट्रफ के खिलाफ 7-5, 7-6, 6-3 से जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। लंदन के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब में पहला सेट हारने और दूसरे सेट की शुरुआत में ही एक ब्रेक से पिछड़ने के बाद स्ट्रफ ने अपनी आक्रामकता बढ़ाई। स्ट्रफ ने पूरे सेट के दौरान दबाव बनाए रखा और 5-4, 30-40 पर सेट पॉइंट हासिल किया। इसके बाद टॉप सीड खिलाड़ी ने अपनी शानदार सर्विस के साथ साथ बेस लाइन पर लगातार अच्छा खेल दिखाया। उन्होंने दूसरे सेट के टाई ब्रेक में जबरदस्त खेल दिखाया और फिर 2 घंटे 35 मिनट तक चले इस मैच में अपनी पकड़ बनाते हुए जीत दर्ज की। उधर महिला सिंगल्स में कोको गॉफ ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अमेरिकी स्टार खिलाड़ी ने पहला सेट गंवाने के बाद वापसी करते हुए जेसिका पेगुला को 4-6, 6-3, 6-3 से मात देकर अपने करियर के पहले ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में जगह बनाई। लंदन के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब में पेगुला लगातार अच्छा खेल रही थी और पहले सेट में ग्रास कोर्ट पर कोको गॉफ की कमजोरियां सामने आ गई, लेकिन नंबर 7 सीड खिलाड़ी ने अपने प्रतिद्वंदी की सभी कोशिशों को नाकाम कर दिया। 1 घंटे 48 मिनट तक चले इस मैच में जीत के साथ 2 बार की मेजर चैंपियन गॉफ अपने करियर में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में सेमीफाइनल या उससे आगे पहुंचने वाली 7वीं सक्रिय खिलाड़ी बन गई। उनसे पहले वीनस विलियम्स, सेरेना विलियम्स, कैरोलिना प्लिस्कोवा, आर्याना सावालिंका और ईगा स्वाइतेक भी ऐसा कर चुकी हैं। जया भारती, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब रुख कर लेते हैं सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक, फुटबॉल पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल के लिए टीमों की सूची तय हो चुकी है। फ्रांस, मोरक्को, नॉर्वे, इंग्लैंड, स्पेन, बेल्जियम, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 8 में जगह पक्की कर ली है। क्वार्टर फाइनल का पहला मुकाबला 10 जुलाई को देर रात 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को के बीच होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना बेल्जियम से होगा। तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना आखिरी क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं राउंड ऑफ 16 के रोमांचक मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से और स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को पेनाल्टी शूटआउट में हराया। सुनते हैं इन मुकाबलों पर एक खास रिपोर्ट।
2: अटलांटा में खेले गए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना ने 0-2 से पिछड़ने के बाद जबरदस्त वापसी करते हुए मिस्र को हराया। मिस्र के लिए यासर इब्राहिम ने 15वें मिनट और मुस्तफा जिको ने 62वें मिनट में गोल किए, जिससे मौजूदा चैंपियन के टूर्नामेंट से जल्द बाहर होने का खतरा पैदा हो गया। इसके बाद लियोनेल मेसी ने अपना जादू दिखाया और 79वें मिनट में क्रिस्टियन रोमेरो के गोल में मदद की।
3: Argentina right back in it, Cristiano Ronaldo.
2: और इसके बाद खुद 83वें मिनट में एक शानदार गोल किया। लुटारो और अर्जेंटीना के कप्तान के बेहतरीन तालमेल ने अर्जेंटीना को मुकाबले में 2-2 से बराबरी पर ला दिया।
3: लुटारो सेंट इट अक्रॉस, इट्स स्वेप्ट इन, एंड ऑफ कोर्स इट्स लियोनेल मेसी।
2: और इसके बाद एंजो फर्नांडीज ने स्टॉपेज टाइम के 3rd मिनट में एक शानदार गोल करके अर्जेंटीना की जीत को सुनिश्चित करते हुए स्कोर 3-2 कर दिया।
3: A game that had everything. Heartbreaking for Egypt. It's finished. Argentina 3, Egypt 2.
2: वहीं एक अन्य मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल कर लिया है। स्विट्जरलैंड ने राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करते हुए कोलंबिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। 1954 के बाद पहली बार स्विट्जरलैंड ने विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। रूबेन वर्गास ने विजय किक मारकर स्विट्जरलैंड को 7 दशकों में पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया है। वैंकूवर में खेले गए इस मुकाबले में दोनों ही टीमें निर्धारित 90 मिनट और अतिरिक्त समय में भी कोई गोल नहीं कर सकी। मैच के दौरान दोनों टीमों ने कई मौके बनाए, लेकिन कोई भी खिलाड़ी ने गोल में तब्दील नहीं कर पाया। इसके बाद मुकाबले का फैसला हुआ पेनल्टी शूटआउट से। स्विट्जरलैंड के लिए रूबेन वर्गास ने सबसे अहम पेनल्टी को गोल में तब्दील कर अपनी टीम की जीत पक्की की। मुकाबले के पहले हाफ में कोलंबिया ने गेंद पर ज्यादा नियंत्रण रखा, लेकिन टीम गोल का कोई मौका नहीं बना सकी। कोलंबिया की सबसे अच्छी कोशिश गुस्तावो कुएर्ता ने की, जिनके शानदार शॉट को स्विट्जरलैंड के गोलकीपर ग्रेगर कोबेल ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से रोक दिया। दूसरे हाफ में लुइस सुआरेज को भी मौका मिला, लेकिन उनका शॉट लक्ष्य से बाहर चला गया। दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड के फैबियन रीडर की वॉली को कोलंबिया के गोलकीपर कैमिलो वर्गास ने आसानी से बचा लिया। अतिरिक्त समय में मुकाबले का रोमांच अपने चरम पर रहा। कोलंबिया के जॉन लुकुमी का हेडर क्रॉस बार से टकरा गया, जबकि स्विट्जरलैंड के जैकियम दोनी का शॉट भी गोलकीपर ने रोक लिया। आखिरकार पेनल्टी शूटआउट में ग्रेगर कोबेल ने एक अहम बचाव किया और रूबेन वर्गास ने निर्णायक पेनल्टी को गोल में बदलकर स्विट्जरलैंड को ऐतिहासिक जीत दिला दी।
3: इट्स ऑल ओवर, स्विट्जरलैंड आर गोइंग टू द क्वार्टर फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप एंड दे've गॉट अ डेट विद लियोनेल मेसी।
2: स्पोर्ट्स स्कैन के लिए मुनीश शर्मा।

0: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। और अब बात करते हैं क्रिकेट पर। नॉटिंगहम में तीसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन के बड़े अंतर से हराया। इंग्लैंड के 202 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 12वें ओवर में सिर्फ 76 रन पर ही सिमट गई। जोफ्रा आर्चर को धारदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने 5 मैचों की T20 सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: टॉस जीतकर भारत ने इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। फिल सॉल्ट ने इंग्लैंड के लिए 44 गेंद में 70 रन की दमदार पारी खेली। वहीं जॉश बटलर ने भी 36 रन का अहम योगदान दिया। सैम करन ने अंतिम ओवरों में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 41 रन की पारी खेली। इंग्लैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 201 रन बनाए। 202 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। अभिषेक शर्मा महज 10 रन बनाकर जॉश टंग का शिकार बने। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके। सूर्यवंशी 5 गेंद में 13 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर का शिकार बने। ईशान किशन भी 13 रन ही बना सके। कप्तान श्रेयस अय्यर के पेविलियन लौटने के बाद भारतीय बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। अक्षर पटेल 10 और तिलक वर्मा 3 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने पूरी भारतीय पारी को 11 ओवर 4 गेंद में ही समेट कर श्रृंखला में बढ़त बना ली। जोश टंग ने 4, जोफ्रा आर्चर ने 3 और आदिल रशीद ने 2 विकेट झटके। बल्लेबाजों के निराशाजनक प्रदर्शन के चलते भारत को T20 इंटरनेशनल में रन के लिहाज से अपनी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि पावर प्ले में 4 विकेट गंवाना हमें मुकाबले में महंगा पड़ा।
2: I feel that we need to accept this loss and completely go back to the drawing board and see what we did wrong. Looking at the wicket, I don't think that it was a 200 wicket. The way we batted, we lost 4 wickets in the power play. I think we lost over there. Great opportunity to come back strong. Not dwell too much about what's happened in the past. Every individual have to think by himself and see how they can win the matches and take that sort of responsibility.
1: इससे पहले भारतीय टीम को वर्ष 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 80 रन से हार झेलनी पड़ी थी। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय टीम अपने दूसरे सबसे कम स्कोर पर ऑल आउट हुई। 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम सबसे कम 74 रन ही बना सकी थी। अब भारत ब्रिस्टल में कल खेले जाने वाले मुकाबले को जीतकर श्रृंखला में जीत का खाता खोलना चाहेगा। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।
0: उधर ICC ने T20 बल्लेबाजों और गेंदबाजों की रैंकिंग जारी कर दी है। भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन पहले और अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर बरकरार हैं। T20 गेंदबाजों में अफगानिस्तान के राशिद खान पहले और भारत के वरुण चक्रवर्ती 5वें स्थान पर हैं। और अब बात करते हैं टेबल टेनिस पर। अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन UTT के 7वें संस्करण का आयोजन कल से 26 जुलाई तक गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। इस लीग में 7 फ्रेंचाइजी टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी। घरेलू टीम डेम्पो गोवा चैलेंजर्स का लक्ष्य रिकॉर्ड तीसरी बार UTT खिताब जीतना होगा। ये लीग सिंगल राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेली जाएगी, जिसमें प्रत्येक टीम लीग चरण के दौरान दूसरी टीम से एक बार भिड़ेगी। टूर्नामेंट से पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मानव ठक्कर ने कहा कि ये प्रतियोगिता आगामी एशियन गेम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
3: It's a very good place. I want to play my best in this league and I want to set the momentum for the Asian Games which is going to happen this September. So yes, it will be a very good challenge for me to play here and be ready for the Asian Games which is going to be in this year and hopefully I will be ready for the Asian Games.
0: टेबल टेनिस खिलाड़ी दिया चिताली ने कहा कि इस टूर्नामेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
4: Every season I think I learn a lot and honestly I think UTT has, it's a lot of pressure playing in such kind of situation. When you're there at 6-6 and you know you need those 2 points in the end, I don't think we ever feel that kind of pressure. So I think playing here has really helped me develop myself and yeah, it's a great preparation I think before the Asian Games.
0: इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में जारी एशियन अंडर 19 और अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रतियोगिता के अंडर 19 50 किलोग्राम कैटेगरी में अंबेडकर मितई ने पुरुषों के वर्ग में दमदार जीत हासिल की। और जन्मदिन की श्रृंखला में आज बात भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की। दादा के नाम से प्रसिद्ध सौरव गांगुली का आज 54वां जन्मदिन है। प्रिंस ऑफ कोलकाता ने 113 टेस्ट मैच में 7212 रन बनाए।
5: A loud applause for the former India captain walking out to the centre. The last time he's coming out to bat in Test match cricket. What a cricketer he has been. Sourav Ganguly fully deserves all the applause.
0: सौरव गांगुली ने 311 एक दिवसीय मैच में 11,363 रन बनाए। उनकी कप्तानी में भारत ने 49 टेस्ट में 21 और 146 एक दिवसीय मैचों में 76 जीत दर्ज की। सौरव गांगुली मानते हैं कि क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट मैदान पर होना सबसे सुखद क्षण है।
6: क्रिकेट एक दिन छूट जाना है और 15 साल भारत के लिए खेले वो वापस नहीं आएगा। वो सेटिस्फेक्शन अलग ही है जब तुम एक तेज गेंदबाज को कवर ड्राइव मारते हो ना, जब बॉल बीच में लगता है और कवर और मिड ऑफ के बीच से जाता है और सारे ताली मारते, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जितने भी आप काम कर लो, जितने भी बड़े बन जाओ, जितने भी पैसे कमा लो, वो वापस नहीं आएगा।
0: आपसे विदा लेने का कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स

0: ज्ञान की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्रुक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओ'नील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। दोनों वाद्य यंत्रों की सुर और ताल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक साझेदारी को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्य ंगना संचिता ओब्रोल के नेतृत्व में कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है।
3: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।
4: मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार तक कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आज दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग के अनुसार राजधानी में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। ऋषु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
5: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी के किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वरना नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ EPFO खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत IT सक्षम सेवा CR

0: यूपीआई टीईएस प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
1: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95.56 रुपए पर बंद हुआ।
0: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोत्सुक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टेंस और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युको ने जैस्मीन पाउलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Melbourne to take part in the third India-Australia annual summit. India and Russia reaffirm commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora. DRDO conducts successful flight test of Pinaka long-range guided rocket at Chandipur in Odisha. Monsoon recovery brings relief. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan expresses confidence that rainfall to gain further momentum this month, leading to acceleration in Kharif sowing. Centre assures all possible assistance to flood-affected states. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is over. And in Wimbledon tennis, Marta Kostyuk of Ukraine and Czech player Linda Noskova enter women's singles semi-finals. Prime Minister Narendra Modi arrived at Melbourne in Australia this evening on the second leg of his three-nation tour after concluding his successful visit to Indonesia. Upon arrival in Melbourne, Mr. Modi was warmly received by Australian Minister for Housing, Minister for Homelessness and Minister for Cities, Claire O'Neill. Our correspondent covering the Prime Minister's Australia visit has filed this report.
4: The air in Melbourne buzzed with immense enthusiasm today as the Indian diaspora turned out in full force to welcome Prime Minister Narendra Modi. The high-profile reception was punctuated by a magnificent cultural showcase that beautifully illustrated the deepening cross-continental friendship through the universal language of music and dance. Before the stage came alive with the performances, the Prime Minister briefly interacted with the community members, sharing warm greetings with the gathered diaspora. Following this heartfelt interaction, the evening commenced with an extraordinary symbolic duet between the didgeridoo, an ancient indigenous Australian wind instrument traditionally crafted from hollow eucalyptus trees, and the Indian tabla. This was followed by a captivating Kathak recital led by renowned Melbourne-based dancer Miss Sanchita Abrol. The artistic showcase concluded with a powerful performance by the 10-piece Australia-India Orchestra, who delivered a stirring symphony rendition of A.R. Rahman's iconic anthem Ma Tujhe Salaam, deeply moving the gathered audience. Suhas Ram, Akashwani News, Melbourne.
3: During his three-day visit, Mr. Modi will participate in the third India-Australia annual summit. He will also participate in the India-Australia CEOs Forum, where he will address a gathering of top business leaders from both countries. The Prime Minister in a social media post said he is looking forward to talks with his Australian counterpart, Anthony Albanese. Earlier in the day, Prime Minister Modi visited the UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta, along with Indonesian President Prabowo Subianto. The two leaders toured the 9th century temple complex in a joint press statement at the temple premises. Prime Minister Modi described the visit as a deeply spiritual and memorable experience.
5: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स में अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, मुझे पूरा विश्वास है आज के बाद भारत के यात्री तो यहाँ जरूर आएंगे। दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं।
3: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today called on Crown Prince Sheikh Sabah Al Khalid Al Sabah of Kuwait. In a social media post, the minister shared that he conveyed the greetings of Prime Minister Narendra Modi to the Crown Prince. Dr. Jaishankar appreciated the Crown Prince's commitment to take forward the bilateral cooperation of India and Kuwait. The External Affairs Minister also called on Prime Minister of Kuwait, Sheikh Ahmed Abdullah Al Ahmed Al Sabah. Dr. Jaishankar thanked him for support to the Indian community's welfare and well-being. In a social media post, the External Affairs Minister welcomed the vision of Mr. Al Sabah for stronger and mutually beneficial India-Kuwait cooperation. Dr. Jaishankar also met Defence Minister Abdullah Ali Abdullah Al Salem Al Sabah and discussed about defense industry cooperation and maritime security. India and Russia today reaffirmed their commitment to strengthen counterterrorism cooperation at multilateral fora, including at the UN, BRICS, EAG and SCO. The Ministry of External Affairs said the 14th meeting of the India-Russia Joint Working Group on counterterrorism was held in New Delhi. Secretary West, Ministry of External Affairs Sibi George and Deputy Foreign Minister of Russia Dmitry Lubinsky co-chaired the meeting. Both sides condemned terrorism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism, and called for concerted action against terrorists, terrorist groups, and their proxies and affiliates. Defence Research and Development Organisation DRDO today conducted a successful flight test of Pinaka Long Range Guided Rocket LRGR at the Integrated Test Range Chandipur in Odisha. The Defence Ministry said the rocket was tested for a user-defined minimum range of 60 kilometres. The Pinaka LRGR rocket is designed by Armament Research and Development Establishment in association with High Energy Materials Research Laboratory with support from Defence Research and Development Laboratory and Research Centre, Imarat. Defence Minister Rajnath Singh has congratulated DRDO, the Indian Army and the industry on the successful flight test. The minister described it as a major milestone in indigenous design and development capability for long-range guided rockets. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today said that several parts of the country have received good rainfall in recent days, reducing the number of rainfall-deficient districts from 262 to 178. The minister said this while chairing a high-level review meeting in New Delhi over the possible impact of El Niño. He expressed confidence that rainfall will gain further momentum during July, leading to an acceleration in kharif sowing.
6: The number of districts facing deficient rainfall has declined from 262 to 178 due to good rainfall in several districts of the country during the last few days. We continue to closely monitor these 178 districts. Better rainfall in July has improved sowing prospects, which is expected to pick up further. As of yesterday, sowing has been completed on over 350 lakh hectares. The delayed monsoon has slightly affected the sowing of tur, soybean and cotton. Farmers are being advised to prioritize sowing of short duration crops such as maize, pear millet and green gram.
3: Mr. Chauhan said the center is closely monitoring the situation in Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat, Uttar Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Bihar, Jharkhand, Telangana, Andhra Pradesh, Punjab, West Bengal and Odisha. The Indian Meteorological Department has said that conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into remaining parts of North Arabian Sea, Rajasthan, Haryana and Punjab during the next 2 to 3 days. IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over parts of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Bihar, East Rajasthan, Madhya Pradesh, Sub-Himalayan, West Bengal, Sikkim and West Uttar Pradesh tomorrow. A report from our correspondent.
7: The Met Department has predicted heavy rainfall over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, East Uttar Pradesh, Gujarat, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Goa and Madhya Maharashtra over the next 2 days. Similar conditions are likely to prevail over Karnataka, Kerala, Mahe, Konkan, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Friday. Delhi NCR today witnessed a brief spell of rain which brought relief to the people of the national capital after warm and humid conditions. It transformed the city's weather into a pleasant and refreshing experience. With Rushu Jaiswal, Akshit Vedyan, Akashwani News, Delhi.
3: Union Home Minister Amit Shah today spoke to the chief ministers of several states affected by heavy rainfall, flood-like situation and landslides and assured them of all possible assistance from the centre. Mr. Shah spoke to Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel and Keralam Chief Minister V.D. Satishan. Meanwhile, Nasik, Raigarh and Palghar districts continue to witness incessant rainfall while heavy showers persist across the Ghat regions of Maharashtra. IMD has issued a red alert for Palghar and Raigarh districts and Ghat areas of Nashik, Pune and Satara. More from our correspondent.
8: Heavy rainfall continued across Nasik and Igatpuri catchment areas, with several locations recording more than 300 mm of rainfall in last 24 hours. Authorities issued advisories for residents along Godavari River following water discharge from filled reservoirs. Raigarh and Ratnagiri district also received heavy rainfall, which resulted in flooding of residential areas. Palghar district has been witnessing very heavy rainfall over

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हो, जंप कर जाती है। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

जी हाँ, नीतू सिंह की अदाकारी और नीतू सिंह को चाहने वाले आज भी उन्हें पर्दे पर देखने की चाहत रखते हैं। नीतू सिंह ने अपनी अदाकारी से सभी का दिल जीता और ये सिलसिला उन्होंने अपने बचपन से ही शुरू कर दिया था।

दो कलियां फिल्म में नीतू सिंह ने डबल रोल किया था और तब उनकी उम्र महज 8 साल की थी। बेबी सोनिया के नाम से उन्होंने अपने अभिनय की ये पारी शुरू की। उस समय पहली फिल्म जो थी वो थी सूरज 1966 में।

जीतू सिंह का जन्म हुआ 8 जुलाई 1958 को दिल्ली के एक सिख परिवार में, पिता दर्शन सिंह और माँ राजी कौर। बाद में ये बंबई शिफ्ट हो गए जो आज मुंबई कहलाती है। यहाँ पैडर रोड जैसे पॉश इलाके में रहने लगे। नीतू का दाखिला भी यहीं के एक स्कूल हिल ग्रेंज हाई स्कूल में करा दिया गया। और फिर कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि एक दिन नीतू सिंह को फिल्म सूरज में बाल कलाकार के रूप में काम करने का मौका मिला। फिर तो ये सिलसिला शुरू हुआ, 10 लाख, 2 कलियां, वारिस और पवित्र पापी। इन फिल्मों में भी नीतू ने बेबी सोनिया के नाम से अभिनय किया। अब बात 1973 की, जबकि पहली बार बेबी सोनिया को बतौर अभिनेत्री फिल्म में साइन किया गया और अब बेबी सोनिया बन गई नीतू सिंह और फिल्म थी रिक्शावाला। एक नायिका के रूप में नीतू सिंह का यह सफर शुरू हुआ 1973 से 1983 तक चला और इस दौरान नीतू सिंह ने लगभग 55 फिल्मों में काम किया। अभिनय की इस शुरुआत में नीतू सिंह की फिल्म रिक्शावाला ने शायद उनकी उतनी मदद नहीं की जितना कि महत्व फिल्म यादों की बारात का था। धर्मेंद्र, जीनत अमान, विजय अरोरा जैसे कलाकारों के साथ इस फिल्म में नीतू सिंह का रोल बहुत छोटा सा था, लेकिन इस फिल्म में उनके हिस्से आया एक गाना जिसने दर्शकों के दिलों तक पहुंचा दिया नीतू।

इस गीत के बाद दर्शकों के बीच एक अलग इमेज बनी नीतू सिंह की, और फिर नीतू सिंह ने अपने समय के लगभग सभी नायकों के साथ बढ़ चढ़ कर काम किया। रणधीर कपूर के साथ हीरालाल पन्नालाल, भला मानुस, कसम वादे,

राजेश खन्ना के साथ महाचोर, चक्रव्यूह और पंजाबी फिल्म सवा लाख से एक लड़ाऊं, जितेंद्र के साथ धर्मवीर, प्रियतमा, चोरनी, जानी दुश्मन, द बर्नी

विनोद खन्ना के साथ सेवक, परवरिश, महाबदमाश, युवराज, राजमहल, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ अब क्या होगा, काला पत्थर। नीतू सिंह ने अपने पूरे फिल्मी करियर में अब तक सबसे ज्यादा फिल्में की ऋषि कपूर के साथ, और 1980 में जबकि नीतू सिंह की उम्र सिर्फ 21 साल की थी, तब उन्होंने ऋषि कपूर के साथ विवाह कर लिया।

ऋषि कपूर के साथ नीतू सिंह की फिल्मों ने हर तरफ वाहवाही बटोरी। यही नहीं, दोनों की फिल्मों का संगीत भी सुपरहिट रहा। कभी कभी अमर अकबर एंथनी, दुनिया मेरी जेब में, जिंदा दिल, दूसरा आदमी, अनजाने में, झूठा कहीं का,

ऋषि कपूर के साथ विवाह के बाद नीतू सिंह ने फिल्मों में अभिनय करना बंद कर दिया और अपना पूरा ध्यान परिवार पर लगा दिया। ऋषि कपूर और नीतू सिंह, जो कि शादी के बाद नीतू कपूर कहलाने लगी, के बेटे हैं रणबीर कपूर और बेटी है रिधिमा। रिधिमा बड़ी है, उनका विवाह हो चुका है दिल्ली के एक इंडस्ट्रियलिस्ट भरत साहनी के साथ, और रणबीर कपूर को तो आप जानते ही हैं। नीतू सिंह ने लगभग 26 साल बाद अपने अभिनय की दूसरी पारी शुरू की और वो भी ऋषि कपूर के साथ ही, फिल्म लव आजकल से।

अब भी नीतू सिंह फिल्मों में सक्रिय हैं। दूसरी पारी की उनकी फिल्में हैं लव आजकल, दो दूनी चार, जब तक है जान और बेशरम। नीतू सिंह स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दीर्घायु हों, यही विविध भारती की कामना है।

0: अभिनेत्री नीतू सिंह पर केंद्रित आज के फनकार प्रोग्राम अभी आप सुन रहे थे शोध स्वर और आलेख अमरकांत का। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर शकील बख्शी। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओ पी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओ पी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अनमोल यादें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओनील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रम्बानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबाह अल खालिद अल सबाह से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है। इससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोस्यूक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मार्टेंस को और यूक्रेन की मार्ता कोस्यूक ने जैस्मिन पॉलिनी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

इस अंतराल के बाद आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। कभी कभी जीवन में कुछ नहीं चाहिए होता सिवाय एकांत के। हाँ, बस चार दीवारें, एक खिड़की, छोटा सा रोशनदान, हल्की सी रोशनी और भीतर की आवाजें। हाँ, भीतर की आवाजें अच्छी लगती हैं तब, क्योंकि वहां कोई अभिनय नहीं होता, कोई भूमिका निभानी नहीं पड़ती। बस अपने भीतर के उन हिस्सों को हम सुन सकते हैं जिन्हें हमने वर्षों से टाल रखा होता है। तब आप खुद से भाग नहीं रहे होते, बस अपने भीतर लौट रहे होते हैं।

के बाद शोर वाला नहीं सुकून वाला प्यार चाहिए होता है ना? ऐसा प्यार जो मुश्किलों से भागे नहीं, ऐसा प्यार जो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में मौजूद हो, ऐसा प्यार जो आत्मा को थकाए नहीं, ऐसा प्यार जो हमको रुलाए नहीं बेवजह, ऐसा प्यार जो अच्छा नहीं बल्कि सही हो। हाँ, बस सही हो।

कहते हैं रिश्ते किसी तूफान की तरह नहीं टूटते, ज्यादातर गिरावटें बिना आवाज की होती हैं। हम उम्मीदों की टोकरी अपने सर पर लिए घूमते हैं और हर उम्मीद हर रोज किसी तारे की तरह टूटकर बिखर जाती है और साथ ही बिखर जाती है हमारी जिंदगी भी।